थैंक गॉड इस फ्राइडे पर आप सबका 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर स्वागत है. थैंक गॉड आप इतना हमें प्यार करते हैं. थैंक गॉड फन एशिया 104.9 FM आप सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते सुनते हैं और हम आते हैं बस आपकी मुस्कान की चाहत में. थैंक गॉड यू आर ऑलवेज विद अस.

थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. रात सुन रहे हैं शो एंड एंजॉयिंग इट टू द फुलेस्ट. और उनकी एक ख्वाहिश है और मैंने कह दिया जो हुक्म का जो सुनेंगे आप. बज रहा है अब आपके लिए ये फनीजा रेडियो पर.

दिल से आप सपना देखे हो ना कि आपका एक घर हो जो आपका ड्रीम होम हो. सो वो ड्रीम होम मेक कम क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज हैव हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. लाइसेंस है 50 स्टेट्स में. द एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर्ड टू योर नीड्स. आप या फिर खरीद रहे हैं, यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम और अपग्रेडिंग और रीफिनेंसिंग. स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विथ कॉन्फिडेंस टूडे. आज ही फोन उठाइए, नंबर दबाइए, उन्हें कॉल कीजिए, क्योंकि उनकी जो पूरी की पूरी टीम है ना, एकदम वेरी प्रोफेशनल, देयर टू हेल्प यू. 9722455626. यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मोर्गेज, मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन. एंड दैट इज फॉर यू ऑल. 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर गाने अनेक, और ये गाना की एक स्टोरी है. चलिए सुनते हैं इसे, फिर स्टोरी बताऊंगी.

will be all right. But yes, all right में आपको पता है ना कि क्यों मैंने पूछा I will be all right because Vishal and Shekhar live आने वाले हैं. ये गाना बनाया था उन्होंने ही. Dallas Bollywood fans, your playlist is about to come alive. Vishal Shekhar आ रहे हैं, the duo behind some of Bollywood's biggest superhits, including this one. And they are bringing the superhit tour to Dallas. होने वाला है Sunday, July 12th को at the Curtis Colville Center Garland. और tickets are on sale now at cashpatelproductions.com. और यही तो होता है ना कि आपने खास खास ये गाने सुनना चाहा और वो बन जाए बज जाएगा आ जाएंगे with such amazing Vishal Shekhar songs that you can just keep on playing it as much as you want क्योंकि वो शाम होने वाली है साथ साथ आपकी और विशाल शेखर की

0: चांद मेरा दिल से लिए, बहुत ही खूबसूरत गाना है, ब्यूटीफुल वन। लेती हूँ मैं अपने पहले पहले कॉलर को ऑन गर्ल हिंदी हिंदी बोल। वेलकम, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम सौम्या है।
0: सौम्या, दिस इज सौम्या प्लेइंग ऑन फनी शो रेडियो विद गर्ल हिंदी हिंदी बोल। चलिए सौम्या जी, आपका वक्त शुरू किया जाए।
1: शुरू,
0: चलिए शुरू हो जाता है, शुरू किया जाए, सभी हिंदी था वैसे। हाउ आर यू डूइंग?
1: मैं बहुत बढ़िया।
0: वेरी वेरी नाइस, व्हाट आर यू डूइंग?
1: मैं खाना लेने आई हूँ यहाँ पे, स्वदेशी।
0: लेने आई हैं, देने आई है लग रहा था आपने कहा, लेने आई
1: नहीं
0: हैं।
1: नहीं मैं लेने आई हूँ, आज कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था
0: वेरी नाइस,
1: तो मैंने सोचा मैं कुछ खरीद लाऊं।
0: हाँ वेरी नाइस, दैट्स द बेस्ट। वीकेंड में नहीं बनाने का मूड होता है, सो यू आर वर्किंग?
1: हाँ मैं काम पे कर जाती हूँ।
0: यू वर्क फ्रॉम होम और यू गो टू द ऑफिस?
1: नहीं, मुझे जाना पड़ता है, रोज 5-6 दिन जाना पड़ता है।
0: ओह माय गॉड, टफ टफ टफ। तो फिर तो कैसे फ्राइडे इवनिंग को आपको मन होगा कुछ बनाने का,
1: कभी
0: राइट?
1: कभी मन कर जाता है, ऐसा
0: हाँ
1: नहीं है, कभी
0: हाँ
1: कभी तो मन कर जाता है, लेकिन आज मन नहीं था।
0: ओके, सो सुपर ग्रेट। तो और क्या प्लान है आज शाम, उसके बाद खाने पीने के बाद?
1: आज तो देखिए बारिश का मौसम है ना, तो लग रहा है कुछ अच्छा गरम गरम खाएं, एंड फिर कोई चलनचित्र देखा जाए। एंड बोला मैंने, अच्छा
0: एंड कुल चलचित्र, कितना अच्छे अच्छे हिंदी बोल रही थी मैं। एंड हाँ ये तो है, बेचारा
1: गलती से
0: गया।
1: निकल गया।
0: बट यस, सुपर चलचित्र देखे, ऑसम, थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट। ये देखिए ऐसे ही हो जाता है ना। एंड 104.9 FM फनीशा रेडियो पर, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें हो ही जाती हैं।

0: तुमता के आर रहमान का म्यूजिक एंड दिस वन फ्रॉम द फिल्म रांझना। दोस्तों पता है ना, वैसे जब तक अभी अभी अभी जो हमारे साथ जुड़ी थी ऑन गर्ल हिंदी हिंदी बोल एंड सौम्या, उन्होंने बोला बारिश हो रही है, बारिशाना मौसम है, तो जब तक बारिश होगी डैलस में ये स्ट्रेस हमेशा रहता है हेल का। और आप सब होम ओनर्स एंड बिजनेस ओनर्स के लिए, अगर आपका रूफ रेडी है नेक्स्ट सीजन स्टॉर्म के लिए या नहीं, ट्रस्ट द एक्सपर्ट्स एट हेल टू नेल कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर प्रोफेशनल रूफ रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर्स। From shingles and TPO to metal roofing, they handle both commercial and residential projects with quality and care. तो फिर जब तक है डैलस में बारिश, तब तक ये जो स्ट्रेस है वो है। And that's not all, they also offer genuine remodeling, painting, repairs and concrete work to keep your property looking its best. Free inspection hai, claim hai, assistant hai. Check out their 5-star Google reviews for dependable service. Call Nisar Ahmed today, 682-561-9795. That is 682-561-9795. Aap email kar sakte hain h2ngcontractors@gmail.com. यहाँ पर गाने सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ने चाह रही हैं कोई। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: कैसे हो अमीना?
0: मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, आप कैसी हैं?
1: बढ़िया बढ़िया।
0: और आपकी जो आवाज है ना, बहुत कट कट के आ रही है। आर यू ऑन अ स्पीकर फोन और अ ब्लूटूथ? सॉरी, देखिए आप जब कॉल करें तो द क्लैरिटी ऑफ द साउंड शुड बी देयर। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: हेलो।
0: हेलो।
2: हाँ जी।
0: हाँ जी, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है जी?
2: मेरा नाम मयंक है।
0: मयंक, आप गर्ल हिंदी हिंदी खेलना चाहते हैं?
2: हाँ, अगर आप खिलाना चाहें तो।
0: अच्छा, मैं चाह रही हूँ, आप चाह रहे हैं?
2: बिल्कुल।
0: तो चलिए आपका वक्त शुरू करती हूँ मैं अभी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मयंक साहब। सो नो हिंदी, ऑलराइट?
2: ओके
0: ओके। क्यों बोला? ओके अंग्रेजी है या हिंदी है?
2: नहीं नहीं, मतलब आप बताएंगे ना वो शुरू कब हो रहा है।
0: अच्छा, अब आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ क्या होता है?
2: अच्छा अच्छा, ठीक है। बताएं आप क्या वार्तालाप करना चाहते हैं?
0: अच्छा, अब आप बोलेंगे ऐसे। थैंक यू सो मच मयंक, आई एम सो सॉरी। यही तो है, यू हैव टू बी रेडी।

लैला मजनू से लिया ये गाना। दोस्तों लैला मजनू और ऑसम है मौसम, क्या हाल है बता दूं आपको जी। वैसे तो बारिश आना दिन है, इट शावर्स अ टाइम, 73 टेम्परेचर गिर चुके हैं, मगी डेफिनेटली था, विंड्स भी 5 से 10 माइल कम ही है, बट बारिश की फुल फ्लैज चांसेस हैं एंड आई एम श्योर बाहर हो रही है। कल है शनिवार, सैटरडे आफ्टर दिस फ्राइडे नाइट जितना भी पार्टी किया हुआ आपने, कल शावर्स हैं फुल फ्लेजर्ड, 73 लो एंड 86 हाई, सो इट इज़ अ वार्म डे बट विथ शावर्स विल फील गुड। संडे संडे 87 हाई 77 लो, मोस्टली क्लाउडी है और सिमिलर टाइप ऑफ वेदर है, बट देर आर नो शावर्स ऑन संडे, सो दैट वे इट इज़ गुड इन एंड आउट ड्यूरिंग द डे। शुरुआत ऑफ द वीक मंडे हो जाता है, थोड़ा सा समर आउट इन अबाउट, 93 हाई विद 76 लो, मोस्टली सनी रहने वाला है, बट थोड़ी अच्छी वाली हवा चलेगी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं, 14 माइल्स पर आवर इज़ नॉट सो गुड, नॉट हवादार बट इट इज़ नाइस। टर्फिक ट्यूजडे 92 हाई 76 लो, पार्टली क्लाउडी। वेडनेसडे मझधार ऑफ द वीक, फिर से मोस्टली सनी रहने वाला है, 94 हाई 78 लो, अच्छी बात यह है हंड्रेड्स नहीं पहुंच रहा है तो अब तक इंजॉय कर लीजिए, एंड शाम और सुबह आर नाइस। थम्स अप थर्सडे विद 95 हाई एंड 79 लो, पार्टली क्लाउडी और फील्स गुड राइट, वेडनेसडे पार्टली क्लाउडी विद द 70s, नाइस फन फिल्मी फ्राइडे। वापस आ जाऊंगी शाम को मैं, लेकिन 97 हाई 79 लो, सिमिलर काइंड, पार्टली क्लाउडी है, बारिश नहीं आज जैसे, दैट्स द ओनली डिफरेंस, बट 80s से 90s पहुंच जाएगा, तो थोड़ा गर्म ज़्यादा हुए आज के मुताबिक, सो देयर यू गो, सो आई एम गिविंग यू द कंपैरिजन, आज और नेक्स्ट फ्राइडे में ऐसा ही डिफरेंस है। सो हियर वी आर getting into some good music.

0: beautiful Humsafar, Varun Dhawan, Alia Bhatt in this amazing movie Badrinath Ki Dulhania. दोस्तों पता है हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के जाते हैं, बट हमें हमेशा ये शिकायत रहती है कि यार डॉक्टर हमारे साथ वक्त ही नहीं बिताते, बस ऐसे ऊपर ऊपर से क्वेश्चंस पूछ लिया, ख़त्म हो गए, 5 मिनट में एवरीथिंग डन. बट ऐसा नहीं होता पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में. एवरी अपॉइंटमेंट इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 मिनट्स बिकॉज ट्रूली अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक्स टाइम. दैट्स वॉट दे बिलीव. बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. फॉर यू, फॉर योर फैमिली एंड फॉर द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज नॉट ऑल एंड पैशन हेल्थ दे आर ऑल्सो ग्रोइंग. They are now hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. And if you're passionate about patients' care, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com or text to 17454 46 for more information. आप विजिट कर सकते हैं passionhealthphysicians.com और कॉल और टेक्स्ट देम एट 214-666-6259. Passion Health Primary Care. Your health is our passion, and that is what they say because they care for you. चलिए एक अपने last listener को लेती हूँ मैं on air for Gal Hindi Hindi Bol for a giveaway. Good evening, Faisha Radio. स्वागत है आपका. How are you doing?
1: I'm doing good. How about you?
0: Awesome, awesome. So you are ready for Gal Hindi Hindi Bol?
1: हाँ जी.
0: ओके, इस के लिए आपको फ्लेवर लाउंज की तरफ से चांस है दाल मखनी ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड इन प्रेस्टन एंड फ्रिस्को मिल रहा है विदाउट इवन विनिंग. ओके, एंड दिस इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली. सो आप अगर स्पीकर फोन पे प्लीज हट जाइए, बहुत इट्स नॉट एट ऑल क्लियर.
1: अभी बेटर है?
0: मच बेटर है. Yes. So what is your name?
1: हाँ जी.
0: What is your name?
1: Hello.
0: नाम क्या है?
1: मयंक.
0: मयंक, आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले कॉल किया?
1: हाँ, कॉल किया था.
0: मैंने उठ के बोल दिया था तो आपने फिर से फोन कर लिया. अच्छा, कभी होता नहीं है बट आज मैं दे रही हूँ तो ओके मत बोलिएगा.
1: सारी कायनात मुझे जिताने में लगी है.
0: सारी कायनात
1: बोला और फोन कट गया.
0: ऑलराइट, सो हियर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड सी इट हैज स्टार्टेड नाउ. ओके नहीं बोलिएगा, टाइम हैज स्टार्टेड नाउ. ओके,
1: बिल्कुल.
0: ऑलराइट, वेरी नाइस, सुपर. सो वेयर आर यू गोइंग मयंक?
1: घर की ओर प्रस्थान किया जा रहा है.
0: अच्छा, वेरी नाइस. व्हाई, वेयर इज योर फैमिली, व्हाट इज हैपनिंग? थोड़ा सा फिल मी इन.
1: परिवार तो घर पे है और कार्यालय में काम खत्म किया तो अब घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं.
0: अच्छा, क्वाइट लेट. हां, दैट्स लेट. 7-8 हो रहा है.
1: थोड़ा विलंब हो गया.
0: अच्छा, इतना विलंब हो गया. व्हाई, यू वर वर्किंग हार्ड और यू वर वर्किंग जस्ट लाइक दैट?
1: शुक्रवार
0: को तो मैं बोलती हूँ आई हैव ब्रॉट इन द वीकेंड जल्दी से. आप क्यों इतना लेट से ला रहे हैं वीकेंड?
1: कभी कभी वार्तालाप हो जाती है जो
0: लंबी हो जाती है. सो यू, दिस इज योर बिजनेस और यू वर्क फॉर समवन?
1: नहीं, कार्यालय में काम करता हूँ, व्यापार नहीं है.
0: अच्छा, नहीं है, सुपर, नो वरीज. तो व्यापार होने से और ज्यादा काम करना पड़ता है. अच्छा है, कार्यालय में है, एटलीस्ट निकल के तो आ जाते हैं फ्राइडे.
1: व्यापारी लोगों को तो काम ज्यादा रहता ही है.
0: हाँ, वो 24/7 रहता है, राइट? वेरी वेरी नाइस. तो खाने पे क्या बना है घर में?
1: खाने में तो मुझे खुद ही को पता नहीं है क्या बना है.
0: नहीं, हाँ, बना होगा बट यू गाइस आर नॉट गोइंग
1: आउट. अभी खोज की जाएगी घर जाके बना क्या है.
0: अच्छा,
1: असली में.
0: अच्छा, हाँ. बना है या नहीं बना है, बाहर जाने का प्लान है, ये भी तो हो सकता है.
1: बाहर जाने की योजना नहीं है आज क्योंकि कार्यालय में विलंब होगा. अगर मैं जल्दी घर जाता तो हो सकता बाहर जाने की योजना बना सकते थे. उस स्थिति में।
0: गुड ऑसम, तो आपने सच्ची में जीत लिया द फ्लेवर लाउंज का डाइन इन ओनली। आई डिड हैव टू जस्ट
1: नहीं,
0: गिव यू,
1: इतना इतना जल्दी खत्म कर दिया आपने,
0: हाँ
1: मुझे लगा
0: बिकॉज
1: थोड़ा
0: वक्त
1: और आप
0: खत्म हो
1: कोशिश
0: गया है,
1: करेंगे।
0: अब बाय
1: अच्छा
0: बाय
1: वक्त खत्म
0: बोलना
1: हो
0: है
1: गया।
0: लोगों को।
1: ओके
0: सो
1: ओके
0: गाइज,
1: ओके
0: इन्हीं के साथ, मयंक के साथ बोल रही हूँ गुड नाइट स्लीप टाइट, गेट अप हैप्पी फ्रेश एंड ब्राइट, विशिंग यू अ फ्लावरफुल मॉर्निंग, कलफुलून, अ जॉयफुल इवनिंग एंड अ पीसफुल नाइट, एंड आई नो इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक डे फॉर यू टुमारो। स्टार्टेड विद अ कप ऑफ पॉजिटिविटी, फिर देखिए दिन कैसा जाता है, एब्सोल्युटली पॉजिटिव, है ना मयंक? आपको लेकर मैं सबसे बात कर रही हूँ क्योंकि आपका इन्फॉर्मेशन लेना है, ये जैसे ही हम ब्रेक में घुसेंगे उसके
1: ओके
0: बाद। साउंड्स गुड, है ना?
1: श्योर,
0: देखिए आप भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी आरजे सीट पर है, सबको बाय कर दीजिए।
2: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट, लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: Documents ya parcel bhejni hai?
7: हाँ,
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ,
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
9: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
6: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
9: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
6: ये क्या होता है?
9: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Funasia.
12: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Funasia Radio.

Namaskar and welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio Dallas. Fun ki frequency rakhiye right kyunki aap enjoy karenge Friday vibe meri yani RJ Swati ke saath. नमस्कार करना चाहती हूँ आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से देना चाहती हूँ धन्यवाद. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू योर फन रेडियो स्टेशन 104.9 एफएम. आज है फ्राइडे, आज की डेट है जून 5th और 8:07 हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी पर. आज बजेंगे खूबसूरत गाने जो आपके दिल को भाएंगे, मन को भाएंगे एंड आपके स्ट्रेस को कर देंगे छू मंतर, क्योंकि यहाँ होने वाला है ढेर सारा धमाल. और अब अपने शो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि इसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगाऊंगी, इसीलिए तो इसका नाम है नो फिल्टर. एंड साथ ही साथ मुझे आपसे ये भी कहना है डैलस की अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो नंबर है 9722355555. मुझसे मिलने की तमन्ना हो, थोड़ा थोड़ा प्यार का इरादा हो तो इस नंबर पे डायल जरूर कीजिएगा.

डैलस आपसे मिलने का तो नहीं पता, लेकिन आपको सुनने का जरूर इरादा है मेरा। अगर आपकी हो कोई भी फरमाइश या कोई भी बात तो जरूर मुझे कॉल कीजिएगा 9722355551। नॉस्टैल्जिक 90s के खूबसूरत नगमे एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ फोनेश्वर रेडियो पर। मैं हूँ आरजी स्वाति, हंसते मुस्कुराते हुए डैलस आपका दे रही हूँ साथ। आज आपने ये जो गाना सुना इस वक्त, उसमें जो आवाज़ थी वो आवाज़ SP सर की थी। जी हाँ, SP बालासुब्रमण्यम, जो कि बहुत ही बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर रह चुके हैं, एंड अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़, यार कहते हैं ना मेरी आवाज़ ही पहचान है। आवाज़ किसी इंसान के चले जाने के बाद भी अगर कोई चीज़ अंदर रह जाती है वो है उनकी आवाज़ की गूंज। तो अगर आपकी आवाज़ में उतना दम होता है तो वो आप एक छाप छोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। उन्होंने तो इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने दिए हैं आपको। बात करेंगे आज हम सारे गाने, मतलब सारे तो मतलब ऑलमोस्ट गाने हम SP सर के एंजॉय करेंगे, क्योंकि हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। कल था उनका बर्थडे, बताऊंगी उनके बारे में बहुत कुछ, लेकिन आज फिलहाल गाने की तरफ चलते हैं। एक और गाना जो बैकग्राउंड में चल रहा है वो चलाने का वक्त हो चुका है। 90s के नगमे, SP सर के नगमे आज एंजॉय करेंगे, आज उनके गानों को करेंगे सेलिब्रेट। तो उनको एंजॉय करते करते आप ज़रूर सलमान को भी एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि 90s के दौर पर SP सर की आवाज़ को सलमान की आवाज़ माना जाता था। तो लीजिए आज बेहतरीन गाने, मौसम भी थोड़ा सा आशिकाना है, एंड आवाज़ तो पूरी तरह से प्यार में डुबा देने वाली है।

on a beautiful and mesmerizing voice, a happy birthday to SP sir, जो कि सलमान खान की आवाज भी माने जाते थे और आज हम उनकी आवाज को सेलिब्रेट कर रहे हैं. 4th of June को उनका बर्थडे था. 1946 को आंध्र प्रदेश में उनका जन्म हुआ था. उन्होंने अपने करियर में 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं एंड उनको इतने सारे गाने गाने का उनके नाम पर रिकॉर्ड भी बना हुआ है. 90s के शुरुआती दौर में जब सलमान खान नए नए सुपरस्टार बन रहे थे तब उनकी करियर पर रोमांटिक आवाज जो सुनाई देती थी वो केवल और केवल एसपी सर की ही होती थी. एंड आपको तो पता है कि ऐसे गाने जैसे कि आते जाते हंसते गाते, दिल दीवाना, कबूतर जा जा, ये सब गाने उन्होंने अमर कर दिए हैं. और अब जो एक गाना मैं आपको सुनाऊंगी, मतलब ज्यादातर उन्होंने मैंने प्यार किया, साजन जैसी फिल्मों में दिया है, देन उसके बाद हम आपके हैं कौन में भी उनकी आवाज सुनाई दी है. और वो जो मखमली आवाज ओन करते थे वो वैसी आवाज़ एक्चुअली किसी और की है नहीं. जो कनेक्शन उनकी उनके गाने में हमें फील होता है दैट इज़ एक्चुअली डिफरेंट लेवल का कनेक्शन फील होता है. और वो होता है ना कि बस गाने हों और प्यार हो जाए, बस ऐसा ही उनका जादू था. अब एक गाने की तरफ लेकर चल रही हूँ, ये थोड़ा सा पुराना है और इसमें कमल हसन और रति अग्निहोत्री है. एनी गेसेस मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ? अरे यार, जैसे मैं हूँ आपकी ड्राइव टाइम साथी, जैसे इस फिल्म में ये दोनों थे आपस में जीवन साथी. फिल्म का नाम जीवन साथी है. गाना बेशक पुराना है लेकिन वाइब इसमें

0: चोर।
1: भूल गए?
2: जानी मेरा नाम,
1: अच्छा?
2: चोरी मेरा काम, जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम, राम और श्याम
1: बंडलबाज।
2: लड़के मिलन गीत गाता चल,
1: बेशरम
2: प्यार का मौसम,
1: बेशरम

चंदन कंगन बंधन झूला बंधन झूला कंगन झूला चंदन झूला झूला झूला दिल दिया दर्द लिया जनक जनक पायल बाजे चम चमा चम गीत गाया पत्थरों में सरगम।

0: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
1: Paid for by Mark Hill for Mayor.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
6: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
7: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
6: K2 ड्राइव मतलब?
7: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
6: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
7: 100%
8: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
9: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
10: Calculating route, rerouting.
9: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
10: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
9: क्यों?
10: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
9: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
11: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट,
10: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
12: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
13: कौन सा?
12: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
13: अरे सारे तो सेम है.
12: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.
13: ओ हाँ, ये तो अलग है.
9: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
14: So, ruko jara, sabar karo.
15: Agla gana, full vibe badalne wala hai. Stay tuned to Phoneshia.

0: आवाज से अगर प्यार ना हो जाए तो वो प्यार किस काम का यार। कितना खूबसूरत ये गाना है। एंड आपको पता है, जब मैं ऑफ एयर थी और ये गाने मैं आपके लिए चला रही हूँ, तभी मेरे पास कॉल्स बहुत सारे आए और उन्होंने मुझे कहा कि थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग ऑल दीज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स टुगेदर, बिकॉज फ्राइडे को जो होता है ना, बड़ा ही रिलैक्सिंग दिन होता है। एंड अगर ऐसे गाने जो कि आपके दिमाग को, आपके मन को सूद कर देते हैं, बस वो अगर बजते रहें तो क्या ही कहने हैं। मतलब दिन बन जाता है, वीकेंड बन जाता है, वीक बन जाता है, महीना बन जाता है, और हो सकता है पूरा साल भी बन जाए, है ना। बिल्कुल, मैं तो आपको यही कह रही हूँ डैलस, कि आप सही जगह पर, राइट फ्रिक्वेंसी पर ट्यून इन करते हैं तो आपको वाइब भी राइट मिलती है। एट श्री कृष्णा ज्वेलर्स, ज्वेलरी इज मोर देन एसेसरी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रेडिशन, एलिगेंस एंड टाइमलेस ब्यूटी। फ्रॉम क्लासिक गोल्ड डिजाइंस टू स्पार्कलिंग डायमंड्स, एंड फ्रॉम इंट्रिकेट कुंदन टू स्टनिंग पोलकी कलेक्शंस, एवरी पीस इज क्राफ्टेड टू सेलिब्रेट लाइज अ स्पेशल मोमेंट। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए श्री कृष्णा ज्वेलर्स का स्पेशल कलेक्शन, नाउ वेलकमिंग यू एट देयर न्यू लोकेशन, 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को 75035। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टिंग फाइन ज्वेलरी एंड चेरिश्ड मेमोरीज सिंस 1967। तो हमारे साथ कुछ जुड़ने वाले हैं, आइए उनको वेलकम कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है ऑन एयर, क्या कहना चाहते हैं?
1: नमस्कार, दिस इज राम आयंगर। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू स्वाति जी।
0: हाँ जी, हाँ जी, राम जी, बिल्कुल बताइए कौन सा गाना
1: सुनना चाहते हैं। फॉर सॉन्ग, दिस इज अ वेरी रेयर सॉन्ग, आई डोंट नो मेनी पीपल हैव हर्ड दिस। बरसात में करके है, इट्स दूरदर्शन से प्रसार भारती सॉन्ग।
0: बरसात में सॉन्ग, बरसात में हम तुम मिले, ऐसा कुछ है क्या?
1: नो नो नो, बरसात में No. I have sent you that link in WhatsApp.
0: Oh wow, okay, thank you so much. हाँ जी, thank you. तो आप एक actually आप अच्छे सिंगर भी हैं, दो लाइनें बताइए कैसा, कौन सा गाना है, मैं ढूंढने की कोशिश करती
1: हूँ। मुझे मुझे वर्ड्स याद नहीं है। बरसात में जज्बात में ना ना ना ना ना ना ना ना समय का में ना ना ना आ गया समथिंग लाइक।
0: अरे वाह, गाना आपने अच्छा गाया, मुझे मिला नहीं लेकिन मैं वो लिंक चेकआउट जरूर करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।
1: थैंक यू।
0: तो सेलिब्रेट कर रहे हैं एसपी सर का बर्थडे, इसीलिए मैंने हर जगह पर ये नोटिफिकेशन डाला है कि अगर आपकी हो कोई स्पेशल फरमाइश एसपी सर के चलते तो जरूर बताइए। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है ऑन एयर।
2: हाय, गुड इवनिंग
0: जी। गुड इवनिंग, बताइए क्या सुनना चाहते हैं आज?
2: सावन बरसे तरसे दिल।
0: सावन बरसे तरसे दिल, इट्स अ एसपी सर सॉन्ग।
2: ओह नो, अच्छा, एसपी सर की बात।
0: मैं एसपी सर के गाने सेलिब्रेट कर रही थी, बट मैं आपकी रिक्वेस्ट को नजरअंदाज नहीं करूंगी, मैं रखती हूँ इसको स्पेयर में। जब तक हमारे पास रिक्वेस्ट है बहुत सारे एसपी सर के गाने की, तो फिर हम उनको सेलिब्रेट कर लेते हैं और फिर आपका गाना
2: सुना देंगे। तो
0: प्लीज बताइए, प्लीज बताइए क्या सुनना चाहते हैं।
2: गर्दिश, गर्दिश का कोई भी गाना एक्चुअली, मतलब
0: गर्दिश मूवी का सॉन्ग, कोई गाना है आपके दिल दिमाग में इस वक्त? हम ना समझे थे बात इतनी सी, ये मेरा दिल तो पागल है। ओके, आपका नाम बताइए प्लीज।
2: प्रवीण।
0: प्रवीण, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड कीप लिसनिंग फनीशा रेडियो 104.9 FM। हेलो, नमस्कार, क्या है आपकी फरमाइश? हाँ जी,
1: सुन दिल रुबा।
0: सुन दिल रुबा,
1: हाँ?
0: ये कौन से फिल्म का गाना है? एसपी सर का गाना
1: है? हाँ, दिस इज सलमान खान एंड
0: सुन दिल रुबा, दिल की सदा।
1: हाँ,
0: ओके, चलिए ये गाना भी आ जाएगा। आपका नाम?
1: रोहित।
0: हेलो,
1: रोहित।
0: रोहित, रोहित, थैंक यू सो मच, आपकी आवाज क्रैक हो रही थी, बाय द वे हम बहुत मुश्किल से आपको सुन पाए, बट कीप लिसनिंग फनीशा रेडियो 104.9 FM में आपका स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं
3: जी। आप एसपी बालासुब्रमण्यम के गाने बजा रहे हैं ना?
0: जी जी, उनके ही गाने हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको आज उनका बर्थडे था कल जी।
3: ए जिंदगी गले लगा ले।
0: वाओ, ए जिंदगी गले लगा, क्या बात है। यही गाने से एक्चुअली मैं शुरुआत कर देती हूँ अभी, लेकिन मतलब क्या ही उनके कहने यार, उनके गाने इतने प्यारे हैं. एंड इट इज़ वेरी वेरी रिलेटेड टू रोमांस एंड एक जिंदगी का कोई सबक, राइट? थैंक यू सो मच फॉर रिक्वेस्टिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड एन्जॉय फ्राइडे वाइब्स विद मी नन अदर देन आरजे स्वाति. एंड आपको हंसता मुस्कुराता हुआ देख कर डैलस मुझे पता नहीं क्यों इतनी खुशी होती है कि लाइफ में हम किसी के लिए, किसी के स्माइल के लिए रीजन बन रहे हैं. अभी इस वक्त कॉल्स का सिलसिला रुक नहीं रहा है, बट और कॉल्स ले नहीं सकते. लेट्स मूव टूवर्ड्स द सॉन्ग एंड देन बातें तो होती रहेंगी.

गले लगा। बिफोर हम गले लगाए एक दूसरे को बताना चाहूंगी, ये एसपी सर का गाना नहीं है, मैंने लगा दिया है, बट गाना बहुत खूबसूरत है, हम सुन तो लेते हैं इसे, आगे हम सेलिब्रेट करेंगे एसपी सर को। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन।

ओके तो हम एसपी सर के साथ साथ सुरेश वाडेकर जी को भी सेलिब्रेट कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि ये गाना मैंने बाय मिस्टेक लगा दिया था रिक्वेस्ट आने पर, क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट की शायद उनको कन्फ्यूजन हो गया था और मुझे भी ऐसा लगा कि शायद एसपी सर का गाना है ये, बाद में मैंने रियलाइज किया कि नहीं ये तो सुरेश वाडेकर जी ने गाया। अच्छा, राधा ने अपने किशन के लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना रिक्वेस्ट किया है और वो एसपी सर की आवाज़ में है डेफिनेटली। तो राधा जी ने अपने हस्बैंड के लिए अभिषेक के लिए ये गाना रिक्वेस्ट किया है एंड साथ में प्रवीण जी ने भी यही गाना रिक्वेस्ट किया है। सो व्हेन इट कम्स टू एसपीबी सर, दीज आर द रोमांटिक मेलोडीज वी ऑलवेज चेरिश, वी ऑलवेज एन्जॉय एंड फील फ्रॉम द डेप्थ ऑफ अवर हार्ट। तो ज़रूर ये गाना मैं चलाऊंगी, और भी बहुत सारे गाने लाइंड अप है एसपी सर के, स्टे ट्यून्ड। आपको बता दूँ कि अगर गलती से भी कभी आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं या फिर स्लिप या फॉल इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो जाए तो एक नाम याद रखेगा अटर्नी उमर ख्वाजा जी का, जो कि आपके लिए फाइट करेंगे आपका केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व। डीलिंग विद द इंश्योरेंस कंपनी इज ऑलवेज स्ट्रेसफुल एंड यू नीड एन अटर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू गेट कॉम्पनसेटेड। सो डोंट यू डोंट पे अनटिल यू विन। सो किसी भी फ्री कंसल्टेशन के लिए या कोई भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 4693005046 और विजिट कर सकते हैं attorneyumar.com। लीजिए एक लव रोमांटिक सॉन्ग, सेलिब्रेट करते हैं इन द वॉइस ऑफ चित्रा एंड एसपीबी सर। आपको पता है इनका जो लाला ला है ना, इट्स सो डिफिकल्ट टू सिंग। अगर आप सिंगर हैं, एग्जैक्टली ऐसी वॉइस, एग्जैक्टली यही सुर ताल और ये स्केल, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड सुनने में कितना आसान लगता है, पर करने जाओ तो पता लगता है कि कितना डिफिकल्ट।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही तो.
11: चिकन बनाना
12: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
13: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
14: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

taken from the movie 100 Days. अरे वाह यार, इस समय की जो मूवी थी ना ये, ओ माय गॉड, ऐसी डरावनी. सच में ऐसा लगता था कि अगर किसी को आगे की कोई चीज़ें दिखती है सपने में और वो सच होने वाली होती है और आपको पता है ऐसा होने वाला है और फिर वो सचमुच घट रहा हो, इससे डरावनी उस समय की क्या चीज़ें हो सकती थी. मतलब एक्चुअल जो भूत वाली फिल्में होती थी ना, उससे भी ज़्यादा डरावनी मुझे ये फिल्म लगती थी. मुझे बहुत पसंद भी थी, मैंने बहुत बार देखी है. एंड सच में जब भी बहुत दिनों के बाद देखती थी, मैं सोचती थी कातिल कौन है. मतलब मैं भूल जाती थी कि सच में कातिल कौन है, है ना. तो अभी भी मुझे, मैं सोच रही हूँ सच में कौन था कातिल. नेक्स्ट है हमारा गाना लाइंड अप फ्रॉम द फिल्म अंदाज अपना अपना, जो कि एक समय पर यह फिल्म जब बनी बिल्कुल सुपर फ्लॉप. सब किसी की ओवर एक्टिंग लग रही है, किसी की एक्टिंग ही नहीं लग रही है, किसी का कुछ लग रहा है कि कनेक्शन नहीं लग रहा है. बट ओवर द टाइम जब ये फिल्म इतनी देखी गई, इतनी पसंद करी गई, तो इसका री रिलीज हुआ एंड ब्लॉकबस्टर हुई. एंड आज तक की सबसे खूबसूरत मूवी, सबसे लाइट वेटेड मूवी, जिसको देखने के बाद किसी के अंदर कोई टेंशन बच ही नहीं जाती है. अगर कोई ऐसी फिल्म किसी को दे बतानी है, मतलब आज हम लोग अभी के भी बच्चों को ये फिल्म दिखाते हैं बैठा के कि देखो यार कितने मज़े की फिल्म है. तो ये जो फिल्म है ये इनिशियली हिट नहीं हुई. ऐसा उस दौर में बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो इतनी हिट नहीं हुई थी, उनको री रिलीज़ किया गया है एंड वो वापस इतनी हिट हुई. और री रिलीज़ इस बेसिस पे किया गया क्योंकि उन्हें ऑफ, मतलब जब वो फिल्म थिएटर में नहीं है, बाद में इतनी देखी जा रही है, उसके बारे में इतनी न्यूज़ आ रही है कि ये फिल्म इतनी पसंद की जा रही है, बार बार देखी जा रही है, तब जाकर डायरेक्टर्स ने ये और प्रोड्यूसर्स ने ये फैसला लिया कि इसे री रिलीज़ करना चाहिए. उनमें से एक फिल्म है अंदाज़ अपना अपना, उसी का गाना अगला मैं आपको चलाने वाली हूँ. काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी इस गाने की और काफ़ी देर से पेंडिंग भी है. आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ और चलती हूँ इस गाने की तरफ. विद कनेक्टिंग अमेरिका यू कैन टर्न योर बिजनेस एक्सपेंसेस इनटू अ पावरफुल इनकम स्ट्रीम थ्रू अ यूनिक इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी डिजाइन टू बूस्ट योर बॉटम लाइन. एंड इट डजंट स्टॉप देयर, दे ऑल्सो हेल्प होम ओनर्स pay off their mortgage in 10 years or less. So don't wait. Call James today at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com and start turning your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn cost into cash. ये रात और ये दूरी, मेरा मिलना है जरूरी. देखिए इतने वीक की दूरी होती है और फ्राइडे को जब मैं मिल जाती हूँ तो आई नो आप मेरे लिए यही गाना गाते होंगे.

0: मौसम का जादू तो है ही है, लेकिन आवाज का जादू है, शो का जादू है और 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो की फ्रिक्वेंसी का जादू भी ऑन है डैलस, क्योंकि भाई गाने ऐसे बज रहे हैं ना जो कि आपके दिल को सुकून पहुंचाते हैं, एंड साथ में ऐसे इंसान को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जिनकी मखमली आवाज के नाम से वो जाने जाते हैं। SPV सर, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड हमारी पूरी फनीशा के रेडियो की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि आप ये बधाई ले नहीं सकते, बट हम आपको हमेशा जब चाहें तब सेलिब्रेट कर सकते हैं। आपको बता दूं डैलस की, इफ़ यू आर क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट, देन फन पिज्ज़ा किचन वेयर फ्लेवर मीट्स फायर। फॉर ऑल माई वेजी लवर्स, ट्राई अचारी पनीर पिज्ज़ा पैक्ड विद टेंगी अचार पंच और सॉफ्ट पनीर मेल्टिंग इन स्पाइसी मैजिक। एंड अगर आप मीट लवर्स हैं तो तंदूरी चिकन पिज्ज़ा इज़ प्योर स्मोकी परफेक्शन के साथ स्ट्रेट तंदूर से आपके टेस्ट बड तक चल कर आ रहा है। सो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस, देर इज़ अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट फन पिज्ज़ा किचन। फन पिज्ज़ा किचन आप ज़रूर चेकआउट कीजिए, फ्रिस्को में भी इनका लोकेशन है, कैरल्टन में भी है, एंड आप विजिट कर सकते हैं, funpizza.com इनका वेबसाइट है। और आपको एक गाना बताना है जो मैं इस वक्त चलाने जा रही हूँ, काफ़ी देर से इसकी रिक्वेस्ट आई थी, बट इस रिक्वेस्ट को मैंने काफ़ी लेट प्ले कर रही हूँ। अच्छा है कि आप ये बताएं कि ये जो फिल्म का गाना आप सुनेंगी ये किस फिल्म से लिया गया है, क्योंकि ये तो नहीं पूछूंगी कि किनकी आवाज़ में है, ये तो सबको पता चल ही जाएगा क्योंकि आवाज़ ही ऐसी है, बट फिल्म का नाम आपको बताना है। गाना सुनिए और बताइए 9722355555। मैं सोच रही थी कि आपको ऑन एयर लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि हमें थप्पड़ से डर नहीं लगता, आपकी आवाज से लगता है। वेलकम मार्विन, वेलकम बैक।
1: वेलकम, कैसी हैं आप? सब ठीक है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप बड़े दिन के लिए फनेशा रेडियो से दूर थे तो इसीलिए आपको वेलकम कर रही हूँ।
1: छुट्टी थी, छुट्टी के बाद वापस आ गए, आपका शो सुन रहे थे, एंजॉयिंग द शो। SP बाला सुब्रमण्यम के गाने आपने बहुत खूबसूरत लगाए
0: जी, कोशिश की।
1: कहीं रोजा का भी एक आधा स्क्वीज इन कर दो, अब कर ही रहे हो।
0: अरे क्या बात है, मैं तो बहुत देर से सोच रही थी कि अब कौन से गाने चलाऊं, काफी गाने प्ले कर चुके हूं, प्लीज बताइए कौन सा गाना।
1: रोजा का कोई भी प्ले कर दे SP साहब का।
0: ओके चलिए, एक सवाल पूछा है मैंने वो प्ले करने के बाद मैं ये वाला गाना भी प्ले कर देती हूँ। पर मार्विन मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हमारी वो चिट चैट और वो मस्ती और वो लड़ाई झगड़े मिस करते हैं, तो एक काम करते हैं ना, आप अभी लड़ लेते हैं हम लोग।
1: लड़ लो
0: है ना, क्योंकि हमारा शो थोड़ी होता था, हमारी तो लड़ाई होती थी।
1: और क्या, लड़ाई में ही मजा है,
0: लड़ाई में ही मजा है। हाँ, जहाँ लड़ाई है वहीं पे अच्छा शो है, ये भी बोल सकते हैं हम लोग फनीशा के लिए। थैंक यू सो मच मार्विन, एंड मैं आपसे ऑफ एयर बात करती हूँ। 104.9 FM फनीशा रेडियो, कीप लिसनिंग। एंड ये गाने में आपका जवाब चाहिए मुझे डैलस, फिल्म का क्या है नाम? 9722355555। जब आप ये सवाल का जवाब देंगे देन आप $10 का गिफ्ट कार्ड सीधे सीधे जीत जाते हैं फन पिज्जा किचन का।

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
3: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
5: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
6: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
7: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam se social injustice aur corrupt practices ke khilaaf bharpoor awaaz uthai. Dallas aur duniya bhar ki taaza tareen khabron ke liye The Jago Times available hai ek click par, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panasia.
9: हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था और उसका जवाब आया. काफ़ी सारे कॉल्स अभी भी आ रहे हैं बट मैं माफ़ी चाहूँगी जिनसे मैंने बात की जिन्होंने ये गिव अवे जीता है. उनका नाम है नीरज. नीरज आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रैक हो रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू टेक योर इन्फॉर्मेशन. कैन यू प्लीज़ कॉल मी बैक ईदर फ्रॉम द अनदर नंबर और फिर कहीं बाहर जाके किसी अच्छे प्लेस से जहाँ मुझे आपकी क्लियर इन्फॉर्मेशन लेते बने. बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू पुट रॉन्ग फोन नंबर. बिकॉज अभी जो मैंने फ़ोन नंबर आपसे लिया वो भी जब आई एम डायलिंग तो वो नहीं सही हो रहा है. आई डोंट नो आपका मुझे कुछ आवाज़ क्लियर ही नहीं हो रहा था. तो प्लीज़ कॉल मी बैक. एंड क्योंकि मार्विन की रिक्वेस्ट आई थी कि हम एसपी सर का रोजा मूवी से कोई गाना चला दें और उनका एक गाना है ये हंसी वादिया. इतना खूबसूरत गाना है जैसा अभी बाहर खूबसूरत मौसम बना हुआ है. तो एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल नंबर एंड मार्विन दास थैंक यू सो मच. आपसे मैंने काफ़ी कुछ रेडियो के शो के दौरान सीखा है एंड आई एम इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स. मुझे पता है कि आप जैसा कोई दूसरा आरजे नहीं है बट हम आपसे सीखते रहते हैं. थैंक यू सो मच.

तो हमारे पास ऑफ एयर एक हमारी पुरानी लिसनर का कॉल आया, जिन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे और मार्विन का जब शो शो सुबह आया करता था तब वो बहुत एंजॉय करती थी वो नोक झोंक वो बातें. एंड यू नो व्हाट, वो मुझे कह रही थी कि वो मुझे सुनती हैं लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाई जब तक मार्विन का कॉल आया नहीं था. मतलब मार्विन, आधे लोग मुझे आपकी वजह से पहचान रहे हैं, तो आपको मुझे कॉल करते रहना चाहिए यार एवरी फ्राइडे को. तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं ना ये आधे पैसे मार्विन को देने लगती हूँ कि आप आके मुझसे बात कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि मैं वही स्वाति हूँ जो आपके साथ शो करती थी. तो मैं गुम नहीं होना चाहती, मुझे तो सुनाई भी देना है और दिखाई भी देना है और आपके मन के अंदर जगह भी बनानी है. तो लीजिए, एक ऐसा गाना चलाऊंगी जिसके बाद आप जरूर मुझसे कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि गाना ही ऐसा है यार. हम एंजॉय कर रहे हैं एसपी सर के गाने ऑन एयर 104.9 एफएम फनीशर रेडियो पर. बहुत कम टाइम बचा है फरमाइश लेने के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसी अच्छी सी तड़कती भड़कती और वाइब के साथ फ्लो होने वाली कोई फरमाइश है तो बताइएगा ज़रूर. ये है फिल्म पत्थर के फूल.

वाह वाह वाह वाह वाह, हम एंजॉय कर रहे हैं एसपी सर के गाने. एंड आपको पता है कि एसपी सर और लता जी की इतने अच्छे रिश्ते थे, वो उन्हें भाई कहती थी और बहुत प्रेम था दोनों के बीच में. जब वो चले गए लता जी से पहले, तो काफ़ी दुख पहुंचा था लता जी को. एंड उन्होंने बहुत सारे बॉलीवुड में गाने साथ साथ दिए हैं. तो जब भी लता जी और एसपी सर साथ आए हैं, ऐसा कोई गाना नहीं है जो हिट नहीं हुआ हो. दोनों लेजेंड्स ने मिलकर अमर गाने दिए हैं. आजा शाम होने आई कबूतर, जा जा दिल दीवाना, हम आपके हैं कौन, एक खूबसूरत रिश्ता उन दोनों के बीच में हमेशा बना रहा. एंड कहते हैं कि एसपी सर इतना ज़्यादा लता जी को मानते थे कि अगर लता जी कुर्सी पर बैठे तो वो बहुत बार नीचे बैठना पसंद करते थे, वहीं उनके पैर के पास, और वो कहते थे कि वो हमेशा उनसे सीखते रहते हैं. तो 2020 में कोविड के दौरान इनका देहांत हुआ, जब हम सब भावुक हो गए थे, क्योंकि उनके ऐसे जाने की कोई उम्र नहीं थी. वो और लाइफ में हमें गाने दे सकते थे, बट क्योंकि हमने उन्हें लॉस किया, हम सबको एक यू नो एम्प्टी स्पेस फील होता है. बिकॉज़ कई बार ऐसे गाने होते हैं जब लगता है कि उनके और भी गाने आए होते और हम और भी बहुत कुछ एन्जॉय कर सकते थे उनके नाम पर, बट क्योंकि उनके गाने इतने हैं ऑलरेडी कि हम उन्हें भी अगर सुनने जाते हैं तो 2 घंटे का शो हमारा कम पड़ रहा है. एक गाना जो मैं आपको चलाऊँगी उन्हीं की आवाज़ में है, उसके लिए एक सवाल है मेरे पास. चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से आपको गिव अवे का ऑप्शन है, तो आप जीत सकते हैं कड़ाही पनीर या कड़ाही चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन, प्लस एंजॉय कर सकते हैं स्पेशल थाली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेस रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. लोकेटेड ऑफ मैकडरमट ड्राइव इन एलन, विजिट कर सकते हैं आप chandigarhbites.com. ज़्यादा डिटेल्स के लिए ज़रूर विजिट कीजिए एंड चेकआउट करिए इनका लोकेशन भी. तो आपको बता दूँ कि ये जो गाना है, इसका जवाब जब आप देंगे जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप कड़ाही पनीर या चिकन कड़ाही जीत सकते हैं. कड़ाही चिकन या कड़ाही पनीर, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कड़ाही पनीर, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो कड़ाही चिकन जीत सकते हैं फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट विच इज़ लोकेटेड इन एलन. ये गाना सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म से लिया गया है. एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल नंबर 9722355555.

राइट डैलस, क्या बात है, बड़ा ही मजा आया मुझे. ऑफ एयर बहुत सारे कॉल्स आए, लेकिन उनमें से एक कॉल आए भरत जी का. भरत जी, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस आंसर. यार ये फिल्म किसने नहीं देखी होगी, ये गाने किसने नहीं सुने होंगे, ये इन जर्नीज को किसने नहीं जिया होगा. तो मुझे सब पता है कि आपको सब पता है, बट मुझे सवाल तो पूछना ही था, और सवाल पूछ के आपको इस गिव अवे में जुड़ने का मौका भी देना ही था. अच्छा, आपको पता है कि अब मैंने कौन सा गाना लाइनअप किया है? वही जिसके बाद एक ट्रेंड बन गया था कि बारात में साली दीदी के देवर को किस तरीके से छेड़ेगी, या दीदी का देवर साली को किस तरीके से छेड़ेगा, है ना, मतलब दुल्हन की बहन को. तो ये जो मुझे लगता है कि जब तक ये मूवी आई नहीं थी, उसके पहले तक ऐसा कुछ था नहीं कि कोई यू नो दूल्हे का भाई कौन है ये देख रहा हो, दुल्हन की बहन कौन है वो देख रहा हो. बट जब से ये मूवी आई, उसके बाद तो मतलब पूरी नज़रें दूल्हे के भाई और दुल्हन की बहन पर ही टिक जाती थी. वैसे ये फिल्म रीमेक है नदिया के पार की, और नदिया के पार में ऑलरेडी ये हो चुका था, बट तब इतनी खूबसूरती से दिखाया गया था इसको कि आई डोंट नो तब ये क्यों नहीं हुआ था. बट कहीं ना कहीं हम आपके हैं कौन से, ये दीदी के देवर और दुल्हन की बहन को किक काफ़ी मिला था, और इसमें भी एक किक है, यानी गेंदे के फूल से जो पड़ता है ना चाय से,

0: यार हमारे पास बहुत ही कम समय बच गया है.
1: हेलो।
0: लीजिए एक हमारे कॉलर को लेते हैं ऑन एयर, फिर एक आखिरी गाने की तरफ चलेंगे. हेलो, वेलकम ऑन एयर.
1: हेलो स्वाति, बहुत ही
0: हेलो.
1: मजेदार प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। और सच पूछे तो मैं इधर ट्यून नहीं कर रही थी और कभी करती भी थी तो इतने अच्छे गाने नहीं लगते थे। मैं सच बोल रही हूँ तो मैं ऑफ कर
0: वाह,
1: देती थी। इतने सिलेक्टेड, इतने मजेदार गाने बज रहे हैं, मजा ही आ जाता है।
0: अरे
1: बहुत अच्छा
0: वाह
1: पेश
0: यार,
1: कर रहे हो आप प्रोग्राम। और
0: थैंक
1: अब
0: यू
1: मैं
0: सो
1: फिर
0: मच.
1: से अब ये टाइम नोट कर ले रही हूँ और सुना करूंगी।
0: अरे वाह, थैंक यू सो मच. मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी प्यारी बात जाते जाते मुझे लगता है कि मैं यही एक बात लेकर चली जाऊंगी. आज जितने भी कॉल्स आए
1: नहीं,
0: सबने यही
1: सीरियसली
0: कहा.
1: मैं सच बोल रही हूँ कि मतलब एक एक गाने, एक ये खास होना चाहिए हर बंदे के दिमाग में कि मैं ऐसे गाने प्ले करूं जो सबको पसंद है।
0: हाँ, नहीं, मैं मेरे दिमाग में सच में, मुझे बहुत बार गानों के नाम पर ये है भी, लेकिन मुझे पता है कि ये ऐसे गाने होते हैं ना जो हर किसी को इतना रिलैक्स कर देते हैं, मतलब टेंशन फ्री. वो बहुत
1: मजा
0: ज्यादा,
1: आ गया,
0: हाँ
1: मजा आ
0: मतलब
1: गया
0: मुझे भी ऐसे गाने बहुत पसंद हैं. थैंक यू सो मच, आपने
1: यार।
0: मुझे ये अश्योरिटी दी है कि मैंने ये प्रोग्राम को बड़े अच्छे से चलाया है एंड आपने उसको मजा लेके सुना
1: हाँ,
0: है,
1: और
0: तो
1: अब मैं सुनती रहूंगी।
0: सुनते रहोगे ना. थैंक यू सो मच. यही
1: श्योर
0: हमारा डायलॉग होता है, कीप लिसनिंग फनीशिया 104.9 FM. आपका नाम बता
1: श्योर,
0: दीजिए जाते जाते प्लीज.
1: मेरा नाम मारिया है।
0: ओ अरे वाह, ओ
1: अभी अभी अभी
0: मारिया,
1: तो
0: ओ
1: अभी
0: मारिया.
1: तो ऐसे ही वाला सुन बनिए, मुझे आवाज दे
0: हाँ, मैं दे रही थी आपको, तभी मैंने बुलाया आपको. है ना. थैंक यू मारिया जी, थैंक यू सो मच. आपका प्यार ऐसे ही हमारे पास, हमारे साथ बना रहे. थैंक यू सो मच. ओके, फनीशा इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे बिकॉज एवरी मोमेंट हैज अ सॉन्ग, एवरी मूड हैज अ मेलोडी, एंड वेदर इट्स अ रोमांस और द हार्ट ब्रेक, अ वेडिंग एंथम और अ पार्टी फेवरेट, वी वॉन्ट टू नो योर टॉपिक्स फ्रॉम जून 1 टू जून 15. तो फिल आउट योर आवर गूगल फॉर्म एंड नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग्स अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. तो फनीशा आपके लिए ये लेकर आए हैं, आप जरूर ये फॉर्म फिलअप कीजिए. फनीशा विल सेलेक्ट द मोस्ट लव सॉन्ग्स फ्रॉम ईच जॉनर एंड द सॉन्ग्स दैट हैव सम दैट हैज बिकम द हार्ट बीट ऑफ मिलियंस. तो आप जरूर गाने सही से सेलेक्ट करके भेजे, हर एक जॉनर का आपको भेजना है. एंड ऑन 21 जून, यानी कि 21 जून को जब हम वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेट करेंगे, एवरी फन एशिया शो विल बी डेडिकेटेड टू डिफरेंट म्यूजिक जेनर फीचरिंग द विनिंग सेलेक्शन. एंड हियर इज द एक्साइटिंग पार्ट, फोकस कीजिएगा डैलस, द लिसनर हुज सॉन्ग चॉइसेस मेक इट इन टू द फाइनल प्लेलिस्ट द मोस्ट विल विन द एक्साइटिंग प्राइसेस. तो जरूर कीजिएगा 104.9.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
8: Har khushi mein aapke saath Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard of 635 East in Irving.
9: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.

0: Race like me.
1: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं. नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: हाँ भाई सेठी,
1: हाँ जी मनी पाजी,
0: पहुंच गए हैं।
1: पहुंच गया मैं। अरे अरे अरे अरे पाजी, घर तो बड़ा सही है, इत्थे तो पार्टी करनी बनती है।
0: ओ पार्टी दी कसरत तेनू हाले, पार्टी करदा दे है तू।
2: पाजी उस गोरे से घर लेके ना एक बार भी यहाँ आए हो?
0: हो गए बहुत साल, हो गए दादी नू मिलन आया सी एक बारी।
1: पाजी तुहाडी दादी मैनू बिल्ली वर्गी क्यों लग रही है?
0: तू लगता है तू पैग लाए होया।
3: तू इदा कर, तू सो जा, आराम कर।
1: नहीं पाजी, एक ही बोतल पीती है, ज्यादा नहीं पीती है, पर दादी बिल्ली वर्गी लग रही है।
3: ओए मेरी दादी नहीं है, उसे गोरी दी दादी होनी है। ओए तू पै जा, ओए तू सो जा, मेरी
0: फ्लाइट है, तू सो जा।
1: पर दादी

0: जैस्मिन सैंडलेस ने बहुत सोहना माहौल बना लिया है। सुमित सेठी की बीट लाओ ते सारे जने हुम हुम आके डांस फ्लोर ते आओ।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल वन मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल टू मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल थ्री अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
4: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

0: Phoenicia Radio 104.9 FM. 104.9
1: FM. Yeah!

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: Ha ha ha.

0: स्पीकर फट जाए।
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड, नॉनस्टॉप स्वैग।
1: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता। ही इज रॉन्ग। वॉच मी।

0: समझे हैं?
1: बढ़िया।
2: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

डूबने का शौक था, उसे बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, उसे मचाना आता था। जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमारी, कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: चार साल बाद तुम्हें मेरी याद आई।
3: आई नीड योर हेल्प प्लीज रॉनी।

0: बोले मुझे थोड़ा आगे चल।
1: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
2: Yeah, it's coming up.

0: Bringing South Asia closer, more closer. Funasia, 104.9 FM.
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: खुदा करे जिंदगी में ये मकाम आए, तुझे भूलने की दुआ करूं और दुआ में तेरा नाम आए।
1: The Dill of Dallas, Heart to Heart, Fun.

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे.
1: Your favorite music on your favorite radio.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
4: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
3: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
9: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
10: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
11: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
13: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
14: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है माफी के कार्यक्रम म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ रहेंगे मीठे तराने और खूबसूरत संगीत। उम्मीद कर रही हूं कि आपका ये वीकेंड सुखद जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और अब आप जुड़े हैं मेरे साथ ऑन दिस म्यूजिकल जर्नी, जहां मैं ले चलूंगी आपको उम्दा गीतों की ओर। तो अगर आपको याद हो तो पिछले हफ्ते हमने गीत ऐसे सुने थे जिनमें शामिल थे कोई फीमेल नेम्स, यानी कि या कुछ फीमेल एक्ट्रेसेस के नाम जो कि बॉलीवुड के गीतों में हो, वो वाले गाने सुने थे हमने। तो वी सेड वेल इट्स टर्न फॉर द गाइज नाउ, सो गाने जिनमें शामिल हैं मेल नेम्स वो गाने सुनेंगे हम आज ऑल द वे अंटिल 10 AM। एंड ऑन दैट नोट आपसे पूछती हूँ, आप के नाम पर अगर कोई गाने बने हैं बॉलीवुड में बताएंगे मुझे एट 972-235-5555। एज आई स्टार्ट ऑफ दिस सॉन्ग विद द नेम अली, और ये गाना लिया है धूम 2 से। अली इस फिल्म में बहुत ही केयर फ्री चार्मर थे, द लाइफ द फ्रेंड हु इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड अ लिटिल बिट ऑफ मस्ती। विद दैट सेड शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की, और आपसे फिर एक बार पूछती हूँ, you have a song on mind or a song that features your name, you're going to let me know at 972-235-5555.
1: Excuse me, do please.

0: और इसके बाद आती है बारी सिंह इज किंग की. सिंह इज किंग नॉट जस्ट अ नेम, एन एटीट्यूड एंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस.
1: Sing is the king, check the record.

0: Yeah. Real cool, like.
1: और सबके दिल को जीतने वाला मुन्ना भाई आ गया है नेक्स्ट. कोई गाने जहन में हैं जिनमें शामिल हैं कोई मेल नेम्स तो बताएंगे 9722355555, या कोई बॉलीवुड के आइकॉनिक नेम्स जहन में आ रहे हैं वो भी शेयर कर सकते हैं. अगेन 9722355555.
2: जे जे हॉस्पिटल आ रहे लो मेरे बाप. अरे किधर किधर. अरे ब्रीच कैंडी होल्ड मैन होल्ड. आई एम बिजी. हाँ

0: मुन्ना भाई एमबीबीएस तो भाई बहुत काम में आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा काम में आएंगे एक अटॉर्नी जो आपके केस को फाइट करेंगे इफ यू एवर फाइंड योरसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और फॉर दैट मैटर इवन ए स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट. तो उमर ख्वाजा का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्प ले आएंगे, इंक्लूडिंग डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज विच इज सच अ स्ट्रेसफुल प्रोसेस व्हेन यू ऑलरेडी गोइंग थ्रू सो मच स्ट्रेस रिलेटेड टू द एक्सीडेंट और द इंसिडेंट. Now, Umar Khwaja will also fight your case and help you get the compensation that you deserve. With that said, I know you're looking forward to getting their contact information. I want to share that along, and that is 469-300-5046. Or if you'd like to get information ahead of time so that you know all the services they offer so that you can call them when you really need them, go ahead and visit attorneyomar.com.
1: डालस की धड़कन 104.9 एफएम फनीजिया रेडियो.
0: अगले गाने को सुनने के पहले आपसे पूछती हूँ सवाल ताकि आप जवाब दें मुझे एट 972-235-5555. सवाल है, अगर मैं कहूँ राहुल, नाम तो सुना होगा, तो आप बताएंगे ये किस पर फिल्माया गया था. राहुल नाम तो सुना ही होगा, बताइएगा किस पर फिल्माया गया है. 972-235-5555.

सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा सुबह के 10 बजे तक। हमारे साथ हैं मीठे तराने और खूबसूरत संगीत जो कि जुड़े हुए हैं एक थीम से, और वो थीम है सभी गाने जिनमें शामिल है कोई मेल नेम्स। लास्ट वीक वी प्लेड सॉन्ग्स दैट फीचर फीमेल नेम्स, बहुत ही लोगों को बहुत पसंद आया। आई सेड वेल लेट द गाइज हैव देयर चांस एज वेल, एंड आई हैव इन दिस सेगमेंट सम नेम्स हैव बिकेम लेजेंड्स। सो स्टार्टिंग विद दिस वन, द ओरिजिनल टॉन।

another name that became a legend is this one. It's Pathan. ऐसे कोई गाने हैं आप सुनना चाह रहे हैं कॉल कर रहे हैं मुझे आप 972-235-5555 पे एंड विल प्ले दीज सॉन्ग्स ऑल द वे अंटिल 10 एएम साथ में होंगे कुछ ट्रिविया साथ ही साथ होंगे कुछ गिव अवेज भी सो स्टे ट्यून्ड ऑल द वे टिल 10 एएम क्वेश्चन है राहुल नाम तो सुना ही होगा वेल ये किस पर फिल्माया गया है बताएंगे मुझे 972-235-5555 थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू म्यूजिक मंत्रा जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता

फैंटास्टिक फन सॉन्ग अगेन और एक और गाने की आई है फरमाइश सुनवाती हूँ आप सभी को, पर ये भी सवाल पूछती हूँ आपसे, अगर जो पंक्ति है यू आर इंटॉक्सिकेटेड बाय द एक्सुबरेंस ऑफ योर वर्बोसिटी, ये कौन सा है गाना आप मुझे बताएंगे 9722355555 पे। एंड दिस वन इज starts with Romeo ki Basti Mein, you know which one it is, the very popular song featuring Mr. Shahid Kapoor and his fantastic dance moves. I know a lot of you like to do the hook step. Well, this one is an interesting one for sure.

0: गाने की शुरुआत वैसे रोमियो से हुई थी.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: बैठ जाऊं पक्का. कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग. और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
8: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
9: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
8: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM. लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
10: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com इज पावर्ड बाय लोन फैक्ट्री. NMLS 2025289. लाइसेंस्ड मॉर्गेज ब्रोकर इन टेक्सस. ऑल लोन सब्जेक्ट टू क्रेडिट अप्रूवल. इक्वल हाउसिंग लेंडर.
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
14: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
15: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
16: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
15: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
17: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
19: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: सभी श्रोताओं का फिर एक बार स्वागत है म्यूजिक मंत्र में, जिसमें मैं हूं आपके संग संगीता। आपका मेरा साथ रहेगा 10 बजे तक। हमारे साथ है मीठे तराने और खूबसूरत संगीत, जो कि जुड़े हुए हैं एक थीम से, और इस थीम में गाने वो शामिल हैं जिन में शामिल हों कोई नेम्स ऑफ सम मेल एक्टर्स, सम मेल्स, सम यू नो मेन के नाम। So, any come to your mind, give me a call, tell me which ones those are, and I'm going to try really hard to bring it to you. And opening this segment with a very warm happy birthday wish going out to Sherv. Sherv, happy 12th birthday to you. These wishes are coming to you from mom, dad, baby, sister, and everybody here at Fun Asia Radio. And iske alawa ye kahungi ki ek aur opening ke liye, here's a trivia question. अगर जो पंक्ति है, यू आर इंटॉक्सिकेटेड बाई द एग्जुबरेंस ऑफ योर वर्बोसिटी, ये गाना कौन सा है? आई नो अ लॉट ऑफ यू रिमेंबर दिस, दिस इज फ्रॉम द यस्टरडेज, बट आई नो अ लॉट ऑफ यू नो दिस वन, सो गिव मी अ कॉल, शेयर इट विद मी वन मोर टाइम। द लिरिक्स आर, यू आर इंटॉक्सिकेटेड बाई द एग्जुबरेंस ऑफ योर वर्बोसिटी, लेट मी नो। 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। बंटी और बबी साथ में।
1: पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और होश उड़ा।

0: That's right.
1: क्या मॉडल है?
2: ओए पहाड़ में गया मॉडल. पहले ये बताइए कि आपके स्वामी जी नहीं आए?
1: स्वामी?
2: ओ स्वामी मीन हस्बैंड.
1: हस्बैंड? हाँ. क्रैक. प्लैनेट सोल.
2: ओए पंटी.

ऐसे कुछ नाम हैं बॉलीवुड में जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं, बहुत ही लेजेंडरी बन चुके हैं, एंड दैट्स बिकॉज ऑडियंसेस इंस्टेंटली कनेक्ट देम टू ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, पर्सनालिटी और एरा. और ये नाम कुछ इस तरह हैं. कुछ नाम हैं राहुल, राज, प्रेम, विजय, डॉन, अर्जुन, कबीर, पठान, राघव. Each of these instantly evokes a distinct personality. अब जैसे कि अगर हम कहेंगे राज या राहुल या प्रेम, तो definitely romance comes to mind. और कहेंगे डॉन, पठान या कबीर, तो style and swagger याद आएगा. विजय या अर्जुन बोलेंगे तो strength और determination होगा. And then Raghav definitely brings out the tradition and devotion. And ये नाम सुनकर ही कुछ अलग वक्त का एक एहसास होता है.

0: जय अर्जुन बोलेंगे तो स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन होगा, एंड देन राघव डेफिनेटली ब्रिंग्स आउट द ट्रेडिशन एंड डिवोशन. एंड ये नाम सुनकर ही कुछ अलग वक्त का एक एहसास होता है, और सदियों से चला आ रहा है एक नाम, और वो है राम. और वो कुछ बहुत सारे गानों में भी इस्तेमाल किया गया है. डू यू रिमेम्बर एनी सॉन्ग्स दैट फीचर द नेम राम? गिव मी अ कॉल एंड लेट मी नो. Talking about songs and names that evoke certain personality and era, well, this next song is in a class of its own. It's called My Name is Anthony Gonzalez, and that's a song that features the words, you see, the whole country of the system is just a position by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your verbosity. And I'd like for you to enjoy these lyrics in the original song, My Name is Anthony Gonzalez.
1: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own verbosity.
2: What?
3: My name is Anthony Gonzalez.
2: Gonzalez?
3: Right. My name is Anthony Gonzalez.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
2: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसी
9: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
10: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहां हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
9: सच में बिल्कुल घर जैसा।
10: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
11: जिस बात का डर था वही हुआ, लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन।
12: अरे कहना क्या चाहते हो?
13: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर। फ्रिस्को, प्लेनो, मैकिनी, अबरी, फ्लावर माउंट, अर्विंग, प्रॉस्पर, एना, एनी लोकेशन यू आर क्लोज टू। कॉल 214-666-6259 और विजिट passionhealthprimarycare.com। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ, योर लैंग्वेज, योर कम्फर्ट।
14: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी, दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में। रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यही मिलते हैं। एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन। तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ। HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

वेलकम नमस्कार खुशामदीद फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। स्टूडियो का नंबर रखें याद 9722355555। अ बिग शाउट आउट टू संगीता फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग टिल 10 AM। एंड यस कमिंग बैक टू जस्ट चिल, सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट जहां ले चलती हूं आपको दुनिया की एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर जहाँ या तो आप जा चुके हैं या जाने का मन रखते हैं, या मेरी पूरी कोशिश होती है कि उस जगह के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊं कि वो जगह आपके बकेट लिस्ट में आ जाए। स्पेशली सिंस समर ब्रेक चल रही है सो आई थॉट कि आपको इस जगह के बारे में बताया जाए। तो आपको मैं आज दो जगह कवर करूंगी, दोनों आसपास ही हैं एंड द प्लेसेज आर आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। सो आज हम वहीं की बातें करेंगे। अगर आप वहाँ जा चुके हैं, कुछ मज़ेदार बातें हैं, यादें हैं जो करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555।

ऑल राइट, यस, दिस इज मधुलिका एंड आज मैं जस्ट यू में आपके साथ बातें कर रही हूँ आयरलैंड एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की. राइट, तो आपको आयरलैंड के बारे में अगर बताऊं तो जो आयरलैंड है इज निकनेम्ड द एमराल्ड आयल बिकॉज ऑफ इट्स लश ग्रीन लैंडस्केप विच इज हेल्प्ड बाय अबंडेंट रेनफॉल. यहाँ इतनी बारिश होती है कि या होती ही रहती है, यू नो, अक्सर होती है कि लैंडस्केप इज लाइक लश ग्रीन. ऐसा लगता है कि एकदम जो पेड़ पौधे जो भी लैंडस्केप है वो एकदम धुली पुछी सी है. सो बड़ा ही सीरीन सा माहौल रहता है.

All right, that was taken from the movie Bluff Master. And coming back to Just Chill के travel segment में, आज हम बातें कर रहे हैं Ireland and Northern Ireland की. तो आपको बताऊं कि जो Ireland and Northern Ireland है, they share the island of Ireland, but they are separate political entities. पता है, Ireland जो है is an independent country, while Northern Ireland is part of the United Kingdom. जी हाँ. तो हम नॉर्दर्न आइलैंड जा चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है. आई हाईली रिकमेंड कि आपको जब भी कभी लंदन जाने का मौका लगे तो ये कुछ 50 मिनट एक घंटे की फ्लाइट है, एंड डेफिनेटली टेक दैट एंड विजिट नॉर्दर्न आइलैंड. नॉर्दर्न आइलैंड में ही बेलफास्ट में द फेमस ओशियन लाइनर RMS टाइटैनिक वॉज बिल्ट. You know, so बहुत ही प्यारा सा एक म्यूजियम भी है वहाँ पे, which you can go and see, and it's जिनको म्यूजियम्स का शौक नहीं है राइट, उनको भी मज़ा आता है. सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप जब नॉर्दर्न आइलैंड जाएँ तो बेलफास्ट में जाकर ये टाइटैनिक का जो म्यूजियम है ज़रूर देखिएगा.

0: development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
2: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
5: Wait, इतना सब और price?
2: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
6: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401, प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
12: The Dill of Dallas. Heart to heart, fun.

104.9 FM Fun Asia Radio bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम as the name suggests Just Chill. Well, आज के Just Chill Travel Segment में हम बातें कर रहे हैं Ireland and Northern Ireland की. तो आपको एक और बात बताऊँ that did you know that Ireland's national symbol is the harp? जी हाँ, आयरलैंड इज इन फैक्ट द ओनली नेशन इन द वर्ल्ड विद अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एज इट्स नेशनल सिंबल. वेल ऐसे ही कुछ और फन फैक्ट्स और कुछ मजेदार बातें. एंड अगर आपके पास हैं कुछ यादें आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड से जुड़ी तो स्टूडियो का नंबर 972-235-5555.

Well, that was taken from the movie Mission Kashmir. अच्छा बातें हम आयरलैंड की या नॉर्दर्न आयरलैंड की कर रहे हैं तो आपको बताऊं दैट यू नो जनरली मोस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड यूज सम काइंड ऑफ पोस्टल कोड्स. जैसे यहाँ पे तो जगह जगह पे पोस्टल कोड से कितना कुछ बदल जाता है राइट ऑन देयर एड्रेस. बट डिड यू नो दैट द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वॉज द ओनली स्टेट इन द यूरोपियन यूनियन that did not have postcodes until very recently. So, सोचिए कि डाकिया जो डाक लाता था वो कैसे मैनेज करता होगा.

वेल दैट वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी पलकों की छाव में. एंड एक और मज़ेदार कुछ कस्टम था वो बताती हूँ आपको मैं, दैट अप अंटिल 1920s कपल्स कुड लीगली गेट मैरिड जस्ट बाय वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर एज लॉन्ग एज दे डिड सो इन टेल टाउन काउंटी मीथ एंड ओनली ऑन सेंट ब्रिजिट्स डे. But if the marriage failed, they could also divorce at the same spot they got married, and even on the same day of marriage. And by doing so, all they had to do was walk away, literally. Well, this custom was based on old Irish Brehon laws, which allowed for temporary marriages to happen. It's a little more complicated these days and not as easy, but ye law tha kafi time tak, and people would really use it.

taken from the movie जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एंड बिल्कुल सही, जिंदगी नहीं मिलती दोबारा. तो आप हमेशा ध्यान रखते हैं, यू नो, यू ड्राइव सेफली, यू ट्राई टू स्टे सेफ. लेकिन कभी कभी हो जाता है दैट डिस्पाइट एवरी थिंग यू डू गेट इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट. देन आपको अटर्नी ओमर ख्वाजा रखने हैं याद, एज ही विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. ही विल डील विद द इंश्योरेंस कंपनी स्ट्रेस एंड यस यू डू नॉट पे until you win. So for a free consultation, aap unhe call karein. The number is 469-300-5046 or you can visit attorneyomar.com. That's attorneyomar.com.

यार मैं हूँ ना। Well, that was a title track, मैं हूँ ना। अच्छा होता है ना कि हर गाने से कुछ एक मूड बनता है या हर मूड से एक गाना याद आता है, राइट? सो फन एशिया इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड म्यूजिक डे बिकॉज एवरी मोमेंट एवरी मूड हैज अ मेलोडी हैज अ सॉन्ग एंड वेदर इट्स रोमांस और हार्ट ब्रेक या कोई शादी का एंथम या पार्टी फेवरेट, वेल वी वॉन्ट टू नो योर टॉप पिक्स। जी हाँ, जून 15 तक यू कैन फिल आउट आर गूगल फॉर्म एंड nominate your favorite songs across different music categories. You know, Phonasia will select the most loved songs from each category and that song that have become the heartbeat of millions. So, and 21st June, which is World Music Day, hai, usi din every Phonasia show will be dedicated to a different category, different musical category featuring the winning selections. So, here's the exciting part, jahan par aap aate hain. Ji haan, the listeners whose songs choices make it into our final playlist the most will win exciting prizes. So visit funasia.net or you can follow our social media pages for details. Celebrate the magic of music with Funasia 104.9 FM.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility, and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
4: Paid for by Mark Hill for Mayor.
5: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hai. Level 1, mixed veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema mutter. Rich, bold, no compromises.
4: Isiliye Tandoori Flame lekar aaya hai, new on the flame and new weekend menu. Visit Tandoori Flame in Garland at Shiloh and PGBT. Tandoori Flame, now serving new favorites. Craving ka level badhao, flavor hum sambhal lenge.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट, मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
13: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
14: Dallas ki dhadkan 104.9 FM. Fun Asia Radio.

You're listening to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ कर रहे हैं हम, as the name suggests, Just Chill. Well, आज हमारे Just Chill के travel segment में हम बातें कर रहे हैं Ireland and Northern Ireland की. तो अगर Northern Ireland की बात करूँ तो Giant's Causeway is a must. Definitely ज़रूर जाकर देखिएगा. ये Northern Ireland का most famous attraction है and it's even a UNESCO World Heritage Site. You know, the striking hexagonal basalt columns were formed by volcanic activity millions and millions of years ago. The local legend says that they were built by the giant Finn McCool. So, कहानी कुछ इस तरह से है. Well, कहानी ये है कि स्कॉटलैंड और यहाँ नॉर्दर्न आयरलैंड में दो बड़े बड़े जायंट्स थे और उनका कुछ ईगो था कि भाई मैं बड़ा कि तुम बड़े, कि मैं खतरनाक कि तुम खतरनाक. एंड एक बार हुआ ये कि जो स्कॉटलैंड वाला जायंट है उसने कहा बस बहुत हुआ और वो लड़ने आ रहा था. एंड नॉर्दर्न आयरलैंड के इस जायंट ने जब देखा कि यार ये तो बहुत बड़ा है, ही इज़ ह्यूज, तो जो ये नॉर्दर्न आयरलैंड की जायंट की वाइफ थी शी वॉज़ वेरी क्लेवर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से, उस जायंट से, कि तुम एक क्रेडल में जाके लेट जाओ. तो हुआ ये कि जब वो स्कॉटिश जायंट आया तो उसको लगा कि यार जब ये बच्चा इतना जायंट है तो वो एक्चुअल जायंट कितना बड़ा जायंट होगा. एंड डर के मारे वो भागा. एंड जब वो भागा तो उसने ये जो स्टोन के ब्रिज थे वो तोड़ दिए डर से कि कहीं ये दौड़ता हुआ ब्रिज यूज़ करते हुए मेरे पास ना आ जाए. तो दैट्स द इंटरेस्टिंग कहानी बिहाइंड जायंट कॉजवे. वेल ऑफ कोर्स रीजंस आर डिफरेंट बट दैट्स द स्टोरी दैट गोज, दैट्स द फोकलोर दैट गोज, बट डेफिनेटली इट्स अ मस्ट, जायंट्स कॉजवे इन नॉर्दर्न आयरलैंड.

वेल शो हो और कोई गिव अवे ना हो, ये भी कोई बात है. वेल गिव अवे आ गया है आपके लिए. जी हाँ, हियर इज योर चांस टू विन द कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. साथ ही साथ आप इंजॉय कर सकते हैं उनकी स्पेशल थाली जो मिलती है मंडे थ्रू फ्राइडे विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली. जो चंडीगढ़ बाइट्स है ना, दे आर लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव जो कि एलन में है. सो विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. एंड अब आपको अगर ये कढ़ाई पनीर या कढ़ाई चिकन जीतना है एज अ गिव अवे, तो मेरे इस सवाल का जो कि दो क्वेश्चंस में स्प्लिट है उसका जवाब देना है. सो स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555, एंड आंसर दीज टू क्वेश्चंस. सिंस अभी हम नॉर्दर्न आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो आपको मुझे बताना है कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्दर्न आइलैंड. एंड द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट फेमस शिप वाज बिल्ट इन बेलफास्ट. सो आई रिपीट द टू क्वेश्चंस व्हिच विल गेट यू द गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन. सवाल ये है दैट व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड व्हाट फेमस शिप वाज बिल्ट इन बेलफास्ट. फिर नॉर्दर्न आयरलैंड जब आप जाएंगे ना, मतलब वो नेचुरल ब्यूटी देख के आप गदगद हो जाएंगे. इट्स रियली रियली वेरी सरीन, वेरी ग्रीन एंड वेरी वेरी प्रिटी.

0: जी हाँ, मैंने गिव अवे के लिए आपसे पूछा था एक सवाल। सवाल कुछ ऐसा था कि आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड कौन सी फेमस शिप जो है यहाँ बिल्ट हुई थी। एंड वी डू हैव अ लिस्टनर ऑन एयर विद अस। हाय, यू आर लाइव ऑन एयर।
1: Hi there. The answer to the question is Belfast, and the second one is Titanic.
0: Awesome, what's your name?
1: Deepin.
0: ऑल राइट दीपेन, बिल्कुल सही जवाब। जीत लिया आपने गिव अवे फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स इन एलन। अच्छा, मैं आपको ऑफ एयर लूंगी, कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी, बट पहले बताएं कि आप जा चुके हैं नॉर्दर्न आयरलैंड।
1: No, that's one of my dream place to go. I would really love to go once.
0: ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। ओके कूल, सो यस, डेफिनेटली कीप लिसनिंग बिकॉज़ आई एम गोना बी टॉकिंग मोर अबाउट नॉर्दर्न आयरलैंड एंड यू विल गेट टू नो व्हाट ऑल यू कैन गो एंड सी। सो आप होल्ड करिएगा, आई विल टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू। ऑल
1: थैंक
0: राइट,
1: यू।
0: हाँ, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। सो यस, नॉर्दर्न आइलैंड की बात करें तो आपको मैं कैरिकरीड रोप ब्रिज के बारे में भी बताना चाहूंगी। यू नो, एक ड्रामेटिक रोप ब्रिज है सस्पेंडेड हाई अबव द सी, कनेक्टिंग द मेन लैंड टू अ स्मॉल आइलैंड, एंड द व्यूज ऑफ द रगेड कोस्ट लाइन आर स्पेक्टेकुलर। और मजे की बात ये है कि काफ़ी विंडी होता है एंड बहुत ही सीनिक है, एंड थोड़ा सा डर तो लगता है कि अगर आपको हाइट से डर लगता है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड वो ब्रिज हवा से भी हिलता है लेकिन इट्स एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। सो डेफिनेटली व्हेन यू गो टू नॉर्दर्न आयरलैंड, ये कैरिकरीड रोप ब्रिज ज़रूर जाइएगा।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM फन एशिया रेडियो. मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल, सैटरडे होता है हमारा ट्रैवल सेगमेंट और आज मैं अभी आपसे बातें कर रही हूं नॉर्दर्न आयरलैंड की. राइट, तो नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हंड्रेड्स ऑफ कैसल्स हैं, टावर हाउसेस हैं एंड रुइंस. यू नो, वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक बीइंग डनलूस कैसल विच सिट्स ऑन अ क्लिफ एज ओवरलुकिंग द अटलांटिक ओशन. बड़ा ही सीनिक सी प्लेस है इस कैसल की. सो डेफिनेटली बहुत सी अच्छी फोटोग्राफ्स यहाँ से आप ले सकते हैं एंड इट्स अ वेरी सीरीन लैंडस्केप दैट यू गेट टू सी. सो या, डेफिनेटली वेन यू गो टू नॉर्दर्न आयरलैंड, Dunluce Castle should be one of your stops and it's really, really very pretty.

taken from the movie Tushan, that was Dil Hara. अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड की अगर बात कर ही रहे हैं तो आपको बताऊं मैं दैट द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लाइसेंस्ड विस्की डिस्टिलरी इज ओल्ड बुशमिल्स डिस्टिलरी, जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड में है, एंड इट ट्रेसेस इट्स लाइसेंस बैक टू 1608. सो कई लोग वहाँ इसीलिए जाते हैं कि भाई ये इतनी पुरानी डिस्टिलरी है एंड इट्स स्टिल वेरी मच गोइंग, एंड दे एंजॉय यू नो दैट टूर दैट दे गिव.

Well, that was a सोनू के टीटू की स्वीटी से छोटे छोटे पैग एंड नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहे हैं तो जो ये द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया है ना, इट गॉट इंस्पायर्ड, पार्ट्स ऑफ इट गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल माउंटेन रेंज विच इज़ कॉल्ड मॉर्न माउंटेन्स. यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो इट्स ग्रेट फॉर हाइकिंग, फॉर फोटोग्राफी एंड ऑफ कोर्स द सीनिक ड्राइव्स. तो अगर आपको ड्राइव करने का शौक है, हाइकिंग का शौक है या फोटोग्राफी का शौक है, देन आई सजेस्ट जब आप नॉर्दर्न आइलैंड जाएं तो यू शुड डेफिनेटली गो टू दिस मॉर्न माउंटेन्स. दैट्स द ब्यूटिफुल माउंटेन रेंज विच यू विल रियली एंजॉय ड्राइविंग एंड हाइकिंग.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
7: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
6: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो।
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग है।
11: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
12: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

0: दिस इज KVMP 104.9 FM फन एशिया रेडियो पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ और एक बार फिर से आप सब की खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, आपकी हमारी जो म्यूजिकल मुलाकातें होती है वो होती है हर शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून। शनिवार की दोपहर आपका और हमारा साथ 3 बजे तक, जहां 12 से 2 के बीच में आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ बॉलीवुड के थीम बेस्ड गाने एंड राइट आफ्टर 2 PM वी विल हैव अ कम्युनिटी राउंड अप। आज कौन सा विषय है, आज कौन से गाने हैं, बिल्कुल आपको बताती हूँ, लेकिन पहले सुनेंगे पहला गीत और उसके बाद कौन सी बातें, कौन से विषय की बातें, कौन सी फिल्म्स की बातें, कुछ आपकी राय, कुछ आपके लिए सवाल, लेकिन क्या होगी वो सवाल, क्या होगी वो राय, थोड़ा सा इंतजार। और 104.9 FM फनेशिया रेडियो मधुलिका को सुना आपने 12 बजे तक और मैं आपके साथ रहूंगी अब 3 बजे तक।
1: कभी

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: फनीश हरिडो पे पहला ही गीत, पहले ही सेगमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये जो गीत आपने सुना, फिल्म का नाम युवा था, जी हाँ। और अगर आप सोच रहे कि भाई आज क्या बातें खास हो रहे जा रही है, कौन से सवाल हो गए आप सभी के लिए, कौन सी राय आपको लेनी है, बिल्कुल आपको सभी ये बातें मैं बताती हूँ। लेकिन आज की जो मेरी बातें होने जा रही है, जो फिल्म्स की बातें हम करेंगे, वो हमारी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दौर की बातें होती है। कौन से? स्कूल या कॉलेज लाइफ की बातें, जहाँ जिम्मेदारियाँ नहीं होती, जहाँ एग्ज़ाम का डर तो होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि एग्ज़ाम के बाद जो वैकेशन है उसका इंतज़ार भी तो रहता है ना। बड़ी बड़ी हमारे पास ऐसी कोई दिक्कतें नहीं होती। तो आज मैं बातें करने वाली हूँ उन सारी हिंदी फिल्मों में जहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज की लाइफ दिखाई गई है, जहाँ पर दोस्ती है, प्यार है, कैंपस लाइफ दिखाई गई है, सपने हैं, शरारतें हैं और ज़िंदगी की कई ऐसी बातें हैं। तो ये सारे गाने सुनेंगे और कुछ सवाल होंगे, कुछ आपकी राय भी होगी, कुछ आपकी ख्यालात हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं एक और गीत, कुछ कुछ होता है से लिया गया है ये गीत। एज़ यू ऑल नो, इस फिल्म में भी कॉलेज लाइफ की बहुत सारी बातें थी और ये गीत खास मरियम जी की तरफ से सोहेल जी के लिए प्यार से वो डेडिकेट करना चाहती है। ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो, मैं हूँ नीलम आपके साथ।

सर फिल्म से सुना आपने ये गीत और आज मैं बातें कर रही हूँ आप सभी के साथ हिंदी फिल्मों में दिखाए गए कुछ स्कूल और कॉलेज लाइफ की, जहाँ दोस्ती होती है, प्यार, सपने, शरारत, कैंपस लाइफ वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी फिल्म्स बनी 80s में, 90s में, 2000 में और आजकल की भी करेंगे कुछ बातें, क्योंकि कैंपस जो होती है, कैंपस की बातें, वो सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती, वो दुनिया होती है जहाँ किरदार भी बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, यादें बन जाती है, राइट, हमेशा के लिए। तो ऐसी बहुत सारी फिल्म्स बनी और इसी फिल्म्स की हम कुछ बातें करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि कुछ सवाल भी आपसे पूछना चाहूँगी, नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड कि भाई कौन सी फिल्म में क्या था, वो तो आप बहुत माहिर है, आई नो दैट यू गाइज आर सो स्मार्ट इन बॉलीवुड ट्रिविया। लेकिन आज कुछ बातें होगी स्कूल और कॉलेज की लाइफ की, लेकिन आपसे कुछ राय भी पूछूंगी। लेकिन इस गाने के बाद होगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और बातें जारी रहेंगी हमारी 2 बजे तक ऑन दिस सेगमेंट ऑन 104.9 FM।

0: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
1: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: जिस बात का डर था वही हुआ, lymphosarcoma of the intestine.
5: अरे कहना क्या चाहते हो?
6: डॉक्टर की बात समझ ही नहीं आई, लैंग्वेज बैरियर का टेंशन भी, अब टेंशन का टाइम गया। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के साथ मल्टी लैंग्वेज नर्सेज और डॉक्टर्स हमेशा आपके साथ हैं। हिंदी, तेलुगु, इंग्लिश, एनी लैंग्वेज यू प्रेफर।

0: Frisco, Plano, McKinney, Aubrey, Flower Mound, Irving, Prosper, Anna. Any location you are close to. Call 214-666-6259 or visit passionhealthprimarycare.com. Passion Health Primary Care. Your health, your language, your comfort.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: एंड वेलकम बैक, दिस इज KCMP 104.9 FM वन एशिया रेडियो पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. शुक्रिया अदा करना चाहूंगी हमारे इस सेगमेंट के प्रायोजक उमर ख्वाजा जी का. जी हाँ, हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो और ना ही हो, लेकिन कभी कभार कोई छोटी मोटी दुर्घटना अगर बन जाए आपके साथ. एंड इफ यू वॉन्ट अ फ्री कंसल्टेशन, चलिए मैं आपको एक नाम दे देती हूँ. उनका नाम है उमर ख्वाजा. 4693005046 इज हिज नंबर वेर यू कैन रीच आउट और यू कैन विजिट हिज वेबसाइट दैट इज attorneyomar.com. और बस हम आपके साथ रहते हैं शनिवार की दोपहर एंड ऑल्सो ऑन संडे आफ्टरनून, और उसी के साथ 2 बजे तक ये सेगमेंट जारी रहेगा. और एक बार फिर से हमारे एक और प्रायोजक का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, माई टाइम इक्विटी, जहां पर आप कॉल कर सकते हैं सीपीए सुधीर पाई को 4697021272. दे ऑफर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. वंस अगेन दैट इज मिस्टर सुधीर पाई, 4697021272. अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यूनिंग किया है, सोच रहे कि भाई बातें क्या हो रही है, तो बातें आज जिंदगी के उस सबसे खूबसूरत दौर की मैं कर रही हूँ. जी हाँ, कॉलेज या स्कूल लाइफ जो भी आप कह लें, जहाँ पे हमारे पास बस एग्जाम का ही बोझ होता था, जिम्मेदारियों का नहीं, बिल्कुल होमवर्क करना होता था, बहुत सारा करना होता था, क्लास में रैंक भी मेंटेन करनी होती थी एंड यू नो ऑल दोज थिंग्स. लेकिन फिर भी आज की जो जिम्मेदारियां है वो तो नहीं थी. तो आज हम जारी फिल्मों की बात कर रहे हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज लाइफ दिखाई गई थी, कुछ कैंपस के सीन थे, कैंपस की बातें थे, उसी के साथ कुछ सवाल हो गए. चलिए आप ये गीत सुन लीजिए, उसके बाद पहला सवाल होगा. एंड यू नो व्हेन आई से सवाल, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी फिल्म्स या हीरो या हीरोइन. कुछ राय आपकी लेना चाहूंगी. कौन सी बात पे? थोड़ा सा इंतजार ऑन 104.9 FM. कुछ

0: जो जीता वही सिकंदर से सुना आपने गीत। और जैसे कि मैंने कहा, आज बहुत सारी ऐसी हिंदी फिल्म्स की हम बातें कर रहे हैं जहाँ पर ये सारे कैंपस लाइफ, कॉलेज या स्कूल लाइफ की कहीं ना कहीं कोई जिक्र था। चलिए, आप जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहती थी, और जैसे कि मैंने कहा इट्स नॉट रिलेटेड टू बॉलीवुड या फिल्म्स की बातें नहीं कर रही हूँ, आप चाहे इंडिया से है या पाकिस्तान या जो भी कंट्री से आप होंगे, एंड आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई, एंड यू नो हमारे जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, स्कूल में होंगे, कॉलेज में या कहीं पर भी, मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री वगैरह वगैरह, आपने भी ये बात नोटिस की होगी इवन आफ्टर सो मेनी ईयर्स हियर और सो मेनी डेकेड्स हियर इन दिस कंट्री, कि हमारी जो सिस्टम है, व्हेन आई से हमारी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिस्टम, राइट, इवन दो इट्स बीन मोर देन डेकेड्स हियर, बट स्टिल, राइट, वी ऑलवेज स्टिल फील कि हमारी इंडिया की बात होती है तो हम हमारी ही कहते हैं। तो हमारी जो एक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, जहाँ पर हमें लड़ना सिखाते हैं एंड सर्वाइवल, बिगेस्ट थिंग इज सर्वाइवल, कि भाई अगर आपको लड़ना है तो आपको सर्वाइव करना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कम्पिटिटिव, वो बात हम सीखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, और हम जो भी रेटिंग हमारी होती है, रैंकिंग जो होती है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप अगर SSC में है तो 80% 90% से कुछ नहीं होगा, राइट, इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन अ गुड कॉलेज यू हैव टू हैव दिस मच ऑफ परसेंटेज। तो जो हमारी सिस्टम है, इट इज़ ऑल अबाउट कट थ्रोट कम्पिटिशन, हमें सर्वाइव कैसे करना है वो। एंड हियर इन अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम इट इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, आप खुद को कैसे खोजेंगे। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि यू मे हैव स्टेड हियर फॉर 10 years, 20 years, 30 years और एनी नंबर ऑफ ईयर्स, आपके हिसाब से, आपकी राय में, जीवन में, लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, जीवन की पाठशाला में कौन सा तरीका बेहतर है? द वे वी लर्न अवर सिस्टम कि भाई सर्वाइव करना है, एजुकेशन सिस्टम में हमें यही सिखाते हैं कि हाउ टू बी नंबर वन इन द क्लास, बस दैट शुड बी योर गोल, और नॉट इवन इन नंबर वन, राइट, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, कुछ अच्छी कॉलेज में जाना है तो बस बहुत पढ़ो, पढ़ते रहो, रटते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, लेकिन यही है आपके लिए सर्वाइवल की बातें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे खुद को खोजो, इट इज़ मोर अबाउट रियलिस्टिक अप्रोच, इट इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिकल अप्रोच। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, आपकी राय में कौन सा तरीका बेहतर है, क्योंकि आपने अपने बच्चों को भी देखा है, आपने अपने आप को भी देखा है। क्या आपको लगता है कि उस सर्वाइवल सिस्टम से आप ज़्यादा सफल हुए, या आपको लगता है कि आपके बच्चे ज़्यादा सफल हो गए विथ नॉट सो मच ऑफ कंपटीशन? एंड फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
1: क्या आपको लगता है? हैंड
0: रेडियो की आवाज़ प्लीज कम कर दीजिएगा, प्लीज।
1: हाँ, कर गया तो मेरे हिसाब से इंडियन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन इज गुड एंड सिलेबस व्हाट शुड बी डू व्हाट शुड टू डू व्हाट इज टू डू वो यहाँ का बेहतर है, क्योंकि मैं 2 साल पहले आई हूँ इंडिया से और मैंने वहाँ पे भी देखा है, मतलब वहीं पे पढ़े बड़े हैं इसलिए, और यहाँ पे 2 साल से मैं टीचर भी हूँ यहाँ पे कुंवर में, और तो मैंने वो नोटिस किया है कि इम्प्लीमेंटेशन की जो स्टाइल है ना वो हमारी ज्यादा अच्छी है और जो करवाया जाता है लोग, मतलब कौन सा थियोरी पार्ट होगा तो कौन सा प्रैक्टिकल
0: करिकुलम, यू मीन द करिकुलम, करिकुलम
1: करिकुलम या करिकुलम यहाँ का बेहतर है, बट इम्प्लीमेंटेशन ऑलवेज गोज विद इंडियन बिकॉज थिंकिंग पावर है, कॉम्प्रिहेंशन है, वो वहाँ से बेहतर है।
0: यहाँ कैलकुलेटर यूज नहीं करते, कैलकुलेटर, राइट, मैथमेटिक्स के लिए कैलकुलेशन लेकर नहीं बैठते थे। ऑलराइट, थैंक यू। और आपका नाम क्या है मैम?
1: पायल।
0: थैंक यू सो मच पायल जी। तो अब बिल्कुल आपकी राय भी लेती रहूंगी थ्रू आउट द शो, लेकिन कुछ शो में हम गाने भी आपके लिए प्रस्तुत तो करने होते हैं, राइट, नॉट ओनली द कॉल्स। एंड आपकी आवाज प्लीज कम कर दीजिए व्हेन एवर यू आर ऑन द एयर। फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर?
2: हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने।
0: यस सर, थैंक यू।
2: डेफिनेटली इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में हम सब पले बड़े।
0: जी सर,
2: बट मैंने जो देखा, डेफिनेटली आपने जैसे बोला कॉम्पिटिटिव बनाता है, सर्वाइवल सिखाता है, बट जब मैंने अपने बच्चों को यहाँ पे देखा पढ़ते हुए और जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ यहाँ आके मैंने हिस्ट्री के बारे में ज्यादा सीखा, क्योंकि जिस तरह से सिखाया जाता है,
0: राइट,
2: अब जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, हमको मतलब वहाँ पे एम्फेसिस होता है कि रट्टा मारो,
0: फॉर्मूला आपको आनी चाहिए सारी,
2: बस फॉर्मूला आनी चाहिए, राइट। हाँ, यहाँ पे है कि कॉन्सेप्ट, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे मैंने मेरे बच्चे के, मेरी बेटी जब जाती थी स्कूल में, तो हिस्ट्री का एक होता था कि ह्यूमन ज्योग्राफी, पहले मैंने सोचा सब्जेक्ट का मतलब ही गलत है कि ह्यूमन और ज्योग्राफी में मतलब क्या है, ये तो बायोलॉजी हो गया और ये ज्योग्राफी हो गया, लेकिन नहीं, उसमें, और उन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे पूछा कि अगर मान लो मिनी आइस एज नहीं आता
0: तो क्या होता?
2: नेपोलियन के सोल्जर्स क्या रशिया को डिफीट कर पाते या प्लेग आता? मतलब मैंने कभी हिस्ट्री को क्वेश्चन ही नहीं किया कि भाई अकबर ने बना दिया तो बना दिया, अब उसमें कभी क्वेश्चन की गुंजाइश ही नहीं थी, है ना। और टीचर को भी पूछो, बेचारे टीचर को भी नहीं पता। अब मैंने, मुझे याद है बचपन में एक बार केमिस्ट्री के टीचर ने पूरा सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा बताया कि प्रोसेस ये वो। मैंने ऐसे इनोसेंटली क्वेश्चन पूछा कि सर आप ये सब तो सिखा रहे हो, उसका मतलब तो बताइए, क्यों हमको सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सीखना है? और किसी ने एक दिन में तो नहीं डिस्कवर किया होगा, और वो तो गोल्ड मेडलिस्ट था हमारा टीचर, लेकिन उसके पास भी आंसर, तो उसका आंसर था शट अप एंड सिट डाउन जैसे। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो यहाँ पे जितना मैंने सीखा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हो, इनफैक्ट ये बच्चों के पहले तो हमारे बुक्स में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर होते थे ज्यादा से ज्यादा, अगर पिक्चर भी हो तो कुछ ऐसे हैंड ड्रॉन। जब मैं यहाँ आया वॉशिंगटन डीसी में जाके जैसे सोलर सिस्टम का रियल मॉडल देखा, अब उसके बाद मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछिए कौन सा प्लैनेट कितना दूर है, कितना बड़ा छोटा, सब पता चल जाता है ना। उस तरह का थिंकिंग वो मुझे यहाँ लगता है कि बहुत ही सही है। इसीलिए मुझे लगता है इनोवेशन, the ability to
0: very innovative,
2: failure का डर नहीं है।
0: Absolutely,
2: वो failure का डर जो बिठाया है, मुझे लगता है वो जो थ्री इडियट्स में सही था ना, वो बोलता है कि शर्मा जी कौन है, शर्मा अंकल क्या सोचेंगे, अरे शर्मा अंकल है कौन?
0: No, you are so right. And that, yeah, definitely, sir. That was my another point to discuss. But definitely a great point कि we are always so much worried about कि मेरे percentage अगर कम आ गए घर पे क्या होगा मेरा? What would my parents say? What would my neighbors say? कि अरे नीलम इतने ही कम percentage
2: है। हाँ, parents से ज़्यादा वो शर्मा अंकल, वो शर्मा अंकल है कौन?
0: So true, sir. Thank you so much for your time, sir.
2: बहुत अच्छा topic आपने शेयर किया।
0: Thank you, sir. Keep listening, जी।

0: जाने तो या जाने ना से लिया गया था गीत, जहाँ पे कॉलेज लाइफ की भी बात थी। आज मैं बात कर रही हूँ हमारी इंडस्ट्री की, नहीं हमारी सिस्टम की, एजुकेशन सिस्टम की। और जो गाने आप सुन रहे हैं वो हिंदी फिल्मों में कहीं ना कहीं जो कॉलेज लाइफ या कॉलेज कैंपस की बातें दिखाई गई थी, वो गाने आपको मैं सुनवा रही हूँ। और उसी के साथ बात हो रही है एजुकेशन सिस्टम, द डिफरेंस बिटवीन USA एंड इंडिया या पाकिस्तान, जहाँ पर भी आप पढ़े हैं। एंड मैनी मैनी कॉलर्स कॉलिंग मी ऑफलाइन, मैं सारे कॉलर्स ऑफ ऑनर नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन ऑफकोर्स हम आपसे बातें भी करेंगे। फनीश, आर यू लाइव ऑन एयर? बताइए सर, एंड रेडियो की आवाज़ प्लीज़ कम कर दीजिएगा।
1: तो रेडियो आवाज कम है।
0: जी
1: ये
0: सर,
1: जो टॉपिक आपने छेड़ा है, नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम लोग घरों में डिस्कस करते हैं,
0: जी सर,
1: और हमें ये समझना चाहिए कि मतलब यहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ की क्या कंडीशन है,
0: जी
1: उसके हिसाब से क्या जरूरतें हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, लोग पढ़ते हैं,
0: जी
1: राइट।
0: जी
1: यहाँ
0: जी
1: पे डर नहीं होता है फेल होने का, क्योंकि अगर क्योंकि वहाँ यहाँ पे एक सेफ्टी नेट है, कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपको गवर्नमेंट से पैसे मिलेंगे,
0: ओके,
1: राइट।
0: राइट
1: हमारे
0: राइट
1: इंडिया में लोग लोन लेते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, जो बाप अपना 2 वक्त की रोटी नहीं चला पा रहा है
0: जी जी
1: वो इतना बड़ा लोन लेके ढीला नहीं छोड़ सकता है बच्चे को, राइट। और
0: राइट,
1: बच्चा भी समझेगा कि भाई हमें कुछ ना कुछ करना है, ऊपर से
0: जुगाड़ जुगाड़
1: कंपटीशन
0: करके
1: इतना
0: ही
1: है।
0: आगे आना होगा,
1: वन
0: राइट
1: पॉइंट फाइव बिलियन पीपल हैं
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: यहाँ पे, और हमारे इंडिया की कहानी नहीं है, अगर आप पूरे एशिया की कहानी देखेंगे तो एशिया में कंपटीशन ज्यादा है।
0: ज्यादा है,
1: और उसके लिए हमारा, आप एंशियंट हिस्ट्री देखिए, हमारे यहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज थी, नालंदा थी,
0: जी
1: तक्षशिला
0: जी
1: थी,
0: जी जी जी
1: इन्वेजन्स हुए, हमारा सब कुछ मतलब ट्विस्ट कर दिया
0: वी
1: गया,
0: रूइंड,
1: खत्म कर
0: या
1: दिया
0: वी
1: गया।
0: गॉट रूइंड, यस यस
1: तो उसके बाद जो अब हमारे पास जो हमारा कुछ अपना कुछ है ही नहीं, जिस हिसाब से हमें कॉलोनाइज करके जो हम अभी हैं, प्लस हमारे पास इतनी भूखमरी है, चीजें हैं, उसके हिसाब से कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। आप सिंपल एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक गरीब बच्चा है और एक अमीर बच्चा। अमीर
0: अमीर,
1: बच्चा ये सोचता है कि भैया हम कब योगा करेंगे, कब मेडिटेशन करेंगे, हम क्या कल को पत्रकार बन जाए, कल को XYZ बन जाए, कल को कुछ बन जाए। गरीब बच्चे के आगे वो
0: एक
1: यही
0: ही
1: सोचता है
0: ऑप्शन
1: कि
0: है,
1: कैसे
0: ट्रू
1: करके एक लेवल पे पहुंचा जाए, अच्छे लेवल पे।
0: जी
1: उसके लिए कुछ प्रोफेशंस हैं जिसके लिए वो हमेशा ट्राई करता है, और उसके लिए कंपटीशन बहुत है।
0: जी जी जी
1: और इंडियंस हो, चाइनीज हो, यहाँ पे आने के बाद सब अच्छा ही कर रहे हैं। तो अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे, ऑफकोर्स मतलब इतना लिबर्टी नहीं है हमें कि हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करें,
0: कर
1: बहुत
0: पाए
1: ज्यादा
0: जी।
1: मतलब डिटेल में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि हमारे पास एक सिलेबस है जो कि साल 6 महीने में खत्म करना पड़ता है।
0: ट्रू,
1: उसमें से भी 5-6 महीने गर्मी इतनी पड़ती है, लोग ये सोचते हैं कि भाई कभी छुट्टी करें कभी छुट्टी ना करें, इतने फेस्टिवल्स होते हैं, इतनी चीजें होती हैं। टीचर भी सोचता है कि हम अगर बच्चों को H2SO4 के बारे में समझाना शुरू करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं, 1 साल में ये पूरा
0: करिकुलम
1: सिलेबस
0: का
1: कैसे
0: जी,
1: कंप्लीट होगा।
0: बिल्कुल सर, वेरी ट्रू वेरी
1: तो
0: ट्रू
1: हर एक सोसाइटी में, हर एक कंट्री में एक अपनी अपनी चीजें सेट हैं, उसके हिसाब से ही सोसाइटी काम करती है,
0: एंड टू योर
1: उसके हिसाब से
0: पॉइंट,
1: ही
0: राइट, द
1: एजुकेशन
0: पॉपुलेशन,
1: सिस्टम वगैरह सब कुछ सेट है वहां पर,
0: जी जी
1: राइट।
0: जी
1: और
0: जी
1: हम वहां के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ने के बाद यहाँ पे आके हम बेटर कर रहे हैं, और जिसका क्या कहते हैं, अमेरिकन या फिर कोई भी हो, एशियंस को एनवी करते हैं क्योंकि हम उनसे बेटर कर रहे हैं।
0: ट्रू ट्रू ट्रू
1: तो वो कॉम्पिटिटिवनेस जो हमारे अंदर है, वो दैट इज समथिंग अ गिफ्ट ऑल्सो। और जब हम इतने अच्छे हो जाएंगे, इतने अमीर हो जाएंगे, मतलब हमारे देश, तो हम ध्यान देंगे कि भाई नेपोलियन कहाँ से आया, नेपोलियन ने ऐसा क्यों किया, नेपोलियन ने वैसा क्यों किया, ये सब चीजें करते रहेंगे।
0: ट्रू ट्रू एंड यू नो समटाइम्स इट बिकॉज ऑफ दैट कम्पिटिशन या बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्किंग नेचर, राइट, हमारी नेचर हो जाती है, हमारी फितरत बन जाती है कि पढ़ना है और बहुत पढ़ना है ताकि हम कुछ कर पाए। वो
1: हाँ,
0: मेहनत हमें यहाँ पर बिल्कुल काम आती ही है, वेदर यू आर इन अ
1: आती है, राइट।
0: कॉरपोरेट
1: उसी की
0: इंडस्ट्री
1: वजह से
0: और
1: हम यहाँ
0: एनी वेयर,
1: सरवाइव कर पा रहे हैं,
0: ट्रू
1: उसी की वजह से हमारी डिमांड भी है, काइंड
0: जी
1: ऑफ, राइट।
0: जी
1: लेकिन उसी की वजह से हम यहाँ का भी इन्वायरमेंट गंदा करते जा रहे हैं,
0: जी जी
1: क्योंकि जहां पे हम देख रहे हैं कि इंडियंस एक अच्छे लीडरशिप वगैरह में आ गए हैं, यहाँ पे हर जगह इंडियंस भर गए हैं, वो इस टाइप से गंद मचाए हुए हैं कि वो ही इन्वायरमेंट इन्होंने वहां का यहाँ कर दिया है,
0: ट्रू ट्रू, ग्रेट पॉइंट सर,
1: करेक्ट,
0: थैंक यू जी
1: जिसकी जिसकी जरूरत नहीं है।
0: जी सर, बट थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, अप्रिशिएट द ओपिनियंस जी, बिल्कुल। आज में आप बहुत सारी बातें हो रही है, एजुकेशन सिस्टम इंडिया वर्सेज USA, बातें होती रहेगी गानों के साथ 104.9 FM।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Mark Hill is the leader Frisco needs to move forward together. As a former school board president, Mark has a proven record of integrity, fiscal responsibility and bringing people together. He values the vibrant contributions of our Asian and Indian communities, recognizing that our strength lies in our diversity and collaboration. Mark rejects divisive rhetoric, focusing instead on smart growth, public safety, and ensuring every voice is heard. For steady, experienced leadership that unites our city, vote for Mark Hill for Mayor. Let's build a stronger Frisco together.
8: Paid for by Mark Hill for Mayor.
9: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
10: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. Warna dhule ko tata bye bye kar do.
11: Are madam, Kareena wala lehenga aur aapka budget match karega kya?
12: Ab karega because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
13: Wait, itna sab aur price?
12: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
14: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डेलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM, Fanisha Radio पे. मैं हूँ नीलम आपके साथ. A very very warm welcome, प्यार भरा स्वागत आप सभी का इस कार्यक्रम में जो मैं आपके लिए प्रस्तुत करती हूँ हर शनिवार की दोपहर 12 से 3 के बीच में, जहाँ 2 बजे तक ये थीम बेस्ड गाने और आज का विषय है एजुकेशन सिस्टम. और जो मैं बातें जो गाने लाई हूँ हमारे ही बॉलीवुड फिल्म्स में, जहाँ कहीं ना कहीं कॉलेज की लाइफ या स्कूल की लाइफ या कुछ कैंपस की बातें हमने देखी ऑन दी सिल्वर स्क्रीन. और उसी के साथ कुछ बातें हो रही है एजुकेशन, जी हाँ, जो सबसे हसीन दौर होता है हमारी ज़िंदगी का, कॉलेज या स्कूल लाइफ, लेकिन उसी के साथ कुछ यहाँ पर आकर हमने कुछ बदलाव भी देखा, कुछ फ़र्क भी देखा, उसकी हम कर रहे हैं बातें यहाँ पे, वो बातें जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी टेक्सास प्राइमरी केयर का, जी हाँ, फॉर 13 ईयर्स जो आप सभी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए वो सेवा में है। अब उनका एक नया नाम है, जी हाँ, एंड उनके नए नाम के साथ इट इज सेकंड फिस्को लोकेशन, नया नाम है लेनोक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप अधरविया। तो ये बिल्कुल आपके लिए है प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर एंड ऑल्सो इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सिटी स्कैन एंड कार्डियक डायग्नोस्टिक, ये सारी बातें आपके लिए अंडर वन रूफ। वंस अगेन, दैट इज आप सभी के लिए इन फ्रिस्को अ सेकंड लोकेशन। देर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, यानी कि आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको लगा कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, यू आर नॉट डूइंग वेल, और अपॉइंटमेंट की अगर आपको चिंता है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, एक दो दिन के बाद, हफ्तों के बाद, ये बातें अब यहीं पर नहीं होगी। बिल्कुल आप जा सकते हैं कभी भी 8 AM till 8 PM 7 डेज अ वीक। कुछ गाने कॉलेज या जहां पर बातें हुई थी कैंपस की, वो सारी फिल्मों की बातें, और उसी के साथ मैं आपकी राय भी ले रही हूं कॉलेज सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इफ इंडिया एंड यूएसए के फर्क के बीच में, एंड आई थिंक आई लॉस दैट लाइन। तो बिल्कुल अगर आप आपकी राय देना चाहे, एंड वन हम्बल रिक्वेस्ट, आई नो आप सभी ये जानते हैं और मानते हैं कि देखिए ये जो हमारी सबकी अलग अलग राय होती है, राइट, एंड एज आई सेड, आप हो सकता है आप 10 साल 20 साल 30 साल यहाँ पर रहे हो, हो सकता है 5 साल यहाँ पर हो, लेकिन आपकी राय, आपके बच्चों की राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, इनफैक्ट इन वन फैमिली, विद इन फैमिली हम सबकी राय अलग अलग होती है, राइट। सो व्हेन यू कम ऑन एयर, अ वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट, दिस इज ओनली टू नो मोर अबाउट, बिकॉज फनीशा रेडियो और एटलीस्ट माई सेगमेंट इज ओनली नॉट फॉर बॉलीवुड की बस हम फिल्मों की ही बातें करेंगे, इट इज ऑल्सो टू एक्सप्लोर डिफरेंट टॉपिक्स, राइट। तो जब भी आप ऑन एयर आए, आपसे बहुत बहुत नम्र अनुरोध है कि आप प्लीज ट्राई टू बी इन दैट मोड की जहां पर आप डजेंट सीम लाइक दैट यू आर अटैकिंग ऑन सम अदर लिसनर और एनी अदर पर्सन, यू नो एवरीबडी हैज देयर ओन डिफरेंट ओपिनियंस। तो आपकी राय की भी मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड विद दैट लेट्स टेक वन पर्सन ऑन एयर, प्लीज रेडियो की आवाज कम कर दीजिएगा। You are on air, but hello. Yes, sir. You are on air.
18: Hi, Neelam. जी नीलम जी.
17: Yes, sir.
18: देखे, जी, what a fantastic topic you have taken, first of all.
17: Thank you, sir.
18: And secondly, I have a request to all our listeners कि आप अगर on air आते हैं तो please cut it short करें, ताकि lot of people are calling.
17: Of course. Yeah, I do get lot of our calls, लेकिन मैं सारे callers on air नहीं ले पाती, so उसके लिए भी माफी चाहती हूँ.
18: Lot of people, हाँ, look. So first of all, I would say, देखे, you cannot, in my opinion, in my humble opinion, you cannot compare apple to oranges. Okay. Mm-hmm. I mean, lot of listeners, they were saying कि हाँ वो रट्टा मारना पड़ता है इंडिया में, ये है वो, तो but वो system works. We have the best colleges. IIT, अपना आपने IIT का नाम सुना होगा, right?
17: Yeah, of course. I grew up in Mumbai, so yeah, IIT in Mumbai is one of the best, of course, along with other 4 centers.
18: Exactly. देखे, हमारी एक सिंपल है, मतलब जोकिंगली आई वुड से, जैसी उर्मिला वैसा फॉर्मूला.
17: जी सर, जी.
18: आपका अमेरिकन सिस्टम टोटली डिफरेंट है, इंडियन सिस्टम टोटली डिफरेंट है. अभी वी आर रियली फॉर्चुनेट, अगर हम वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, अच्छा हमने एजुकेशन लिया है, तो व्हाई आर वी हियर,
17: राइट.
18: तो वो, हाँ, बिकॉज हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ सके या वट एवर द रीजन कुड बी, बट वो टाइम पे, और इनफैक्ट अभी भी, और ये एजुकेशन सिस्टम हमें इंडिया में मिला है एक्चुअली ब्रिटिश से. आई वेंट टू अ ब्रिटिश स्कूल इन बॉम्बे, सेंट मेरीज. आई डोंट नो इफ यू आर फ्रॉम बॉम्बे, यू वुड नो.
17: आई एम फ्रॉम मुंबई सर. यस सर,
18: करेक्ट. कॉन्वेंट स्कूल था, ब्रिटिश स्कूल था.
17: जी जी जी.
18: तो वो एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडियन का भी, संविधान का भी है, लेकिन वो हमें मिला था ब्रिटिश से भी काफी. तो आई एम जस्ट माइंड ऑफ हम्बल ओपिनियन, आवर सिस्टम इज बेस्ट. तो वो रट्टा मारना है जो भी है, वी आर कॉम्पिटिटिव, और हम लोग आज दुनिया में, आपको पता है 1 in 10 डॉक्टर्स इन यूएस इज इंडियन.
17: एब्सोल्युटली जी सर, जी. थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू जी.

दिल फिल्म से सुना आपने गीत और कुछ ऐसे ही फिल्म्स की कर रही हूँ मैं नीलम बातें आज, जहाँ पर आपने कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज लाइफ या कैंपस के सीन्स देखे थे। उन्होंने 4.9 FM फनीश रेडियो, ग्रेजुएशन सीजन चल रही है भाई, आपके भी बच्चे स्कूल से कॉलेज से वगैरह वगैरह वो भी कुछ प्राउड पेरेंट्स अब बन गए होंगे, तो मैंने सोचा कि आज के दिन चलिए हम कुछ बातें करते हैं एजुकेशन सिस्टम की। देखिए, आई अग्री एंड डिसअग्री विथ मोस्ट ऑफ द लिसनर्स, ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, एंड दिस शो इज़ ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, ताकि हम बियॉन्ड बॉलीवुड, राइट, आपकी जो राय होती है, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ आवर लाइव्स वी डिस्कस ऑन दिस शो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस कंट्री से आते हैं, चाहे इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका या एनी एशियन कंट्री, इन माई हम्बल ओपिनियन नंबर वन थिंग हमें सर्वाइव करना इसलिए सिखाते बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। वी ऑल नो कि वहाँ पर नंबर वन इशू इज़ पॉपुलेशन, नंबर टू इज स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज। हर जगह पर, हर स्कूल में, हर कॉलेज में आपको सारी चीज़ें वो नहीं मिलेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स मे नॉट हैव दैट गवर्नमेंट ग्रांट, इट्स अ प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, एंड दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर द फाइनेंसिस, ये बात हम सभी जानते हैं, राइट। सो विद दैट, सारे स्टूडेंट्स को, टीचर हो या स्टूडेंट के जहन में एक ही बात होती है कि भाई हमें जो डिग्री मिलनी है और वो डिग्री से कुछ नहीं होगा, जस्ट गेटिंग अ डिग्री कि आप बीकॉम बन गए, बीई आपने कर लिया या कंप्यूटर साइंस कर लिया, मेडिकल, आपको उस डिग्री के अलावा भी कुछ करना होगा टू मेक श्योर दैट यू सक्सेड इन योर लाइफ। यू आर लिविंग इन मे बी अ वन बेडरूम टू बेडरूम अपार्टमेंट इन मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया, सो यू नो दैट योर पेरेंट्स हैव स्ट्रगल्ड सो मच, राइट, टू मेक यू समथिंग, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने भी कड़ी मेहनत की है। सो टू मेक दैम प्राउड, यू हैव नो ऑप्शन बट टू स्टडी वेरी वेरी हार्ड टू मेक श्योर कि आप जो आपके माँ बाप चाहते उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए, आपके जो माँ बाप चाहते वो आपका करियर बन जाए। सो हमारे लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन कम्युनिटी की मैं अगर बात करूँ, हमारे लिए एक्सपेरिमेंटेशन हैज़ नो ऑप्शन, हम एक्सपेरिमेंट अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आपने देखा होगा US में कि अपने पैशन को फॉलो करने के लिए दे विल टेक अ गैप ईयर, कि हाँ भाई एक गैप ईयर ले लिया क्योंकि यू नो आई वॉन्ट टू चेंज द मेजर। हम लोग सुनकर हैरानी हो जाती है कि यार गैप ईयर क्या होता है, यहाँ गैप मंथ नहीं ली, जिंदगी में सोचा नहीं था कि गैप वीक क्या होता है, राइट, एक हफ्ता छुट्टी कर नहीं पढ़ना, क्योंकि अगेन द कंट्रीज वी कम फ्रॉम, नंबर वन थिंग इज़ पॉपुलेशन एंड नंबर टू इज़ आई वुडंट से पॉवर्टी बट आई वुड से डेफिनेटली स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, जो शायद इस बच्चों को पता ही नहीं है। दे डोंट नो दैट कि वहाँ पर एक क्लासरूम में 50+ 60+ किड्स को बिठाते हैं, स्टूडेंट्स को, नो मैटर हाउ वेल द बिल्डिंग इज़, हाउ बिग द बिल्डिंग इज़, लेकिन आपके क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स तो होगे ही होगे, राइट। टू हैव वन लैब एंड शेयरिंग दैट विद एवरीबडी, टू हैव वन स्मॉल लाइब्रेरी शेयरिंग दैट विद एवरीबडी, इन बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई नहीं बिकॉज दे हैव नेवर स्टेड इन दैट कंट्री। तो कई लिसनर्स की बात से मैं सहमत हूँ कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी, हम जिस अर्थव्यवस्था में है, हम जिस इकोनॉमी में है, वहाँ पे जुगाड़ या सर्वाइवल इज मस्ट फॉर एवरीबडी।

0: कहाँ गया वो ढूंढो। हमारी फिल्म्स में कहीं ना कहीं जब जब बदलाव होता है, राइट, 80s की फिल्म्स देख लीजिए आप, कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, कॉलेज कैंपस की, 90s की, एंड देन दे ट्राई टू डू ऑफ कोर्स गिव आउट अ गुड मैसेज एज वेल। जैसे कि थ्री इडियट्स में एक बात बहुत ही क्लियर की गई थी कि जो हम कलंक मानते हैं, सामाजिक कलंक मानते हैं हम, कि भाई अगर आपने पढ़ाई नहीं की, अगर आप फेलियर हो गए या आपने अच्छे परसेंटेज आपको नहीं मिले, तो यू डोंट रियली हैव टू थिंक कि आप यू आर अ लूज़र इन लाइफ। ये बहुत अच्छी तरह से इस बात में बात दिखाई गई थी इस फिल्म में, और हमारे कई लिसनर्स भी ये बात मानते हैं। तो वन थिंग डेफिनेटली कि हमें ऑफकोर्स सर्वाइव करना सिखाते हैं, हमें जुगाड़, आई वुडंट यूज़ द वर्ड जुगाड़, बट ऑफकोर्स वी आर वेरी वेरी कंपिटिटिव। क्लास में 89% से 90% के बीच में भी 2.2 भी अगर आ जाए तो वी गेट सो कम्पिटिटिव कि अरे यार 90% नहीं आए इस साल में, अरे यार आई एम नॉट सेकंड नंबर और थर्ड नंबर इन द क्लास। सो वो सारी बातें हमें सिखाते हैं हमारी सिस्टम, बट एट द सेम टाइम हमारी, इट्स नॉट एजुकेशन सिस्टम, इट्स अवर सोशल सिस्टम, राइट, कि हमारे नेबर्स क्या सोचेंगे, हमारे अंकल, वो दूर के अंकल है, वो दूर के आंट को क्या लगेगा कि अरे उसने IIT में उसको एडमिशन नहीं मिला, अरे उसको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, देखो हमारे बेटे को तो मिल गया। सो इट इज़ नॉट अबाउट द एजुकेशन ओनली, इट इज़ अबाउट द सोशल सिस्टम एज वेल, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपेरिजन रिलेटिव्स में होती है। यहाँ पर ये बात नहीं है क्योंकि द फैमिलीज आर ऑल्सो वेरी अलूफ। यहाँ वाइट फैमिलीज में अगर आप देखें तो दो भाई के बीच में इतनी कंपटीशन नहीं होगी जितनी इंडियन फैमिलीज में दो भाई के बीच में या दो दोस्तों के बीच में होती है। सो इट इज़ जस्ट नॉट द एजुकेशन सिस्टम, वी कैन नॉट जस्ट ब्लेम कि हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हम लोग बहुत कंपिटिटिव है। इट इज़ अबाउट अवर फैमिली लाइव्स ऑल्सो, अबाउट अवर सोशल सिस्टम ऑल्सो, कि हम बहुत ही कंपिटिटिव हो जाते कि उससे बेहतर करना है ज़िंदगी में। हमारे कज़िन ने ये किया, अगर मैं बेहतर नहीं करूँगा तो मम्मी नाराज़ हो जाएगी, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी आर रूटेड, बिकॉज वी आर सो क्लोज निटेड फैमिली, नथिंग रॉन्ग विद दैट। वाइट फैमिलीज में नहीं होती ये बात, क्योंकि प्रोबेबली दे ओनली मिट ड्यूरिंग थैंक्सगिविंग एंड क्रिसमस, और वो दे डोंट केयर रियली कि अरे अच्छा ठीक है तुम्हें ये इस कॉलेज में मिला, गुड फॉर यू। लेकिन हमारे यहाँ छोटी छोटी चीज़ों की कंपेरिजन होती है, मे बी टू गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट, बिकॉज वी आर वेरी वेरी क्लोजली निटेड फैमिलीज विथ अवर कजिन्स, चाचा, मामा, ये वगैरह वगैरह। तो आपकी राय उसमें भी लेना चाहूँगी, लेकिन इस गाने के बाद ऑन 104.9 FM।
1: मुंह तो बंद करो अंकल।

0: और बस ऐसे ही बातों के साथ, गानों के साथ होगा कमर्शियल ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, कुछ और भी बातें, कुछ और भी राय और कुछ और भी गाने बाकी है जहां पर हम बातें कर रहे हैं आज एजुकेशन सिस्टम की, और जो फिल्म के नाम आप फिल्म के गाने सुन रहे हैं वो सारे गाने कहीं ना कहीं कॉलेज या स्कूल लाइफ या कैंपस सीन से भरे हुए थे इस फिल्मों में। तो बस ऐसी बातें, गाने और आपके ढेर सारे कॉल्स के साथ शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक बार फिर से। विषय कोई भी हो, थीम कोई भी हो, सेगमेंट कोई भी हो, लेकिन आपके प्यार के लिए, आपके बहुत सारे कॉल्स के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। एंड इट्स अ वीकेंड आफ्टरनून, जी हाँ, जहाँ पर आपका हमारा साथ होता है एवरी वीकेंड 12 से 3 के बीच में ऑन सैटरडेज एंड संडेज 12 से 2 के बीच में 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। भूलिएगा मत, 2 से 3 के बीच मैं ही आपके लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ।
1: फ्रिस्को इज ग्रोइंग फास्ट एंड द फ्यूचर ऑफ आवर सिटी नीड्स एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप। फॉर मोर देन 40 इयर्स, रॉड विलहावर हैज हेल्प्ड बिल्ड फ्रिस्को, क्रिएटिंग जॉब्स, सपोर्टिंग लोकल बिजनेसेस, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टिंग इन द कम्युनिटी ही कॉल्स होम। रॉड बिलीव्स इन सेफर नेबरहुड्स, स्मार्टर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग द फैमिली वैल्यूज दैट मेक्स फ्रिस्को स्पेशल। दिस इलेक्शन योर वोट मैटर्स। वोट रॉड विलहावर फॉर फ्रिस्को मेयर, बिकॉज द नेक्स्ट 4 इयर्स विल डिफाइन द नेक्स्ट 40।
2: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
4: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट। My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
7: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
6: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
7: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट

0: astrologereshwar.com.
1: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
2: And welcome back. This is KZMP 104.9 FM, Fun Asia Radio. I am Neelam, aapke saath, a very, very warm welcome. चलिए मैं आपको वर्ल्ड म्यूजिक डे की कुछ जानकारी देती हूँ. जी हाँ, इट इज़ कमिंग अप ऑन जून 21st. तो आपको क्या करना है, बिकॉज वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग, फन एशिया रेडियो इज सेलिब्रेटिंग हर मूड के लिए, हर मेलोडी के लिए. बस आपको एक काम करना है, आपके अगर आपको कुछ डेडिकेशन है, आपके कुछ गाने हैं, फ्रॉम जून 1st टिल जून 15th यू कैन फिल आउट अवर गूगल फॉर्म एंड यू कैन नॉमिनेट योर फेवरेट सॉन्ग अक्रॉस डिफरेंट म्यूजिक कैटेगरीज. तो आपको ये करना होगा ऑन फन एशिया वेबसाइट, फन एशिया फेसबुक पे. और जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलेगी, हार्ट बीट ऑफ मिलियंस ऐसे गाने होते हैं, राइट? तो वो सारे गाने आप सुनेंगे ऑन योर रेडियो, फन एशिया रेडियो. और इतना ही नहीं, अगर आप ऐसे वन ऑफ द लिसनर है जिसकी चॉइस से जिसके सॉन्ग हमारे सबसे ज़्यादा फाइनल प्लेलिस्ट में आ रहे हैं, तो आपको भी कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस मिल सकती है. यू कैन विजिट funasia.net फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आपने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, बातें हो रही है कॉलेज या स्कूल लाइफ की, और ऐसी कुछ फिल्मों की मैं कर रही हूँ बातें, क्योंकि ये जो हमारे मस्ती के गाने मस्ती की बातें होती थी, राइट, उस ज़माने में जहाँ स्कूल और कॉलेज की बातें होती थी, यस ऑफ कोर्स वी डिड हैव स्ट्रेस ऑफ एग्ज़ाम, स्ट्रेस ऑफ ये यूनिट टेस्ट है, ये है एंड एनुअल एग्ज़ाम, ये वो ऑफकोर्स यहाँ की सिस्टम से अलग होती थी हमारी सारी बातें, लेकिन फिर भी जो आज की हमारी जिम्मेदारियाँ है उससे तो कम होती थी वो बातें. तो ऐसी बहुत सारी फिल्म्स बनी है और बातों बातों में एक बात निकल आई कि हमारे जो सिस्टम है कंपेयर टू US सिस्टम, जहाँ पर हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इट इज़ सो डिफरेंट, सच अ वास्ट वास्ट डिफरेंस. सब ने अपनी अपनी राय दी, सब ने अपनी अपनी ओपिनियन दी, और हमारी सिस्टम इज़ मेड ऑफ अवर इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी की वजह से हमें जो हम कॉलोनाइज्ड हुए थे उसकी भी एक वजह होती है, एंड नॉट ओनली दैट, इट्स ऑलवेज द पॉपुलेशन एंड स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. जिस तरह से हम पढ़े हैं, जहाँ पर हर चीज़ के लिए हमें कंपटीशन करनी पड़ती है, सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सिस्टम दैट वी लिव्ड इन. ऐसी बहुत सारी बातों के साथ ऑन 104.9 FM फन एशिया, मैं हूँ नीलम.

खिलाड़ी फिल्म से सुना आपने गीत, और जैसे कि मैंने कहा, सबकी अपनी अपनी राय और सबकी एबिलिटी अपनी सिस्टम होती है हर कंट्री की, एंड दोज थिंग्स आर देर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएबल्स, देर आर सो मेनी डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंसिस्ट ऑफ आवर सिस्टम, चाहे वो हमारी एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले, हमारी जॉब सिस्टम की बात कर ले, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ, मैं भारत की बात कर रही हूँ, कि करियर का मतलब होता है, कॉलेज का मतलब होता है कि प्लेसमेंट, एक सुरक्षित भविष्य चाहिए बस। अगर डिग्री मिल गई तो हाथ में लेकर हमें कुछ ना कुछ करना है, फॉलो करना है जो हमारे पेरेंट्स ने किया, जो हमारी सोसाइटी ने किया, हमारे समाज ने किया, एंड वी वॉन्ट अ सिक्योर फ्यूचर। अब ऑफ कोर्स बात बदलने लगी है इन सिंस लास्ट 5 or 10 years, कि लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई हर एक बच्चे को डॉक्टर ही बनना है, हर एक बच्चे को इंजीनियर ही बनना है। दे डू वॉन्ट टू मेक श्योर कि अपने बच्चे अपने पैशन को फॉलो करें, बट स्टिल इट विल टेक अ वाइल। अभी जो बदलाव आया है उसे कम्प्लीट बदलाव होने में बहुत बहुत साल लग जाएंगे, कि आपके बच्चे को अगर गिटार बजाना है तो गिटार बजा देंगे हमारे इंडियन कम्युनिटी या इंडियन पेरेंट्स, बैक इन इंडिया की मैं बात करती हूँ, कि उन्हें पढ़ने के लिए मत मजबूर करो। ये बदलाव आने लगा है, बट नॉट एट द होल कंट्री में, ऐसे नहीं हमने बात देखी कि हर कोई ऐसा ही सोचता है। लेकिन उसी के साथ एक और भी चीज़ है, कलंक। हम मानते हैं कि फेलियर इज़ अ कलंक। अगर आपके बच्चे नहीं पढ़े, अगर आपके बच्चे को अच्छी परसेंटेज नहीं आई, अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, तो इट्स लाइक अ सोशल स्टिग्मा। तो उस पर बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जिसकी अलग अलग वजह बताई जा रही है। तो अगर आप भी कुछ इसके लिए सोचते हैं, आपके जहन में भी कोई ऐसी वजह है कि क्यों है ये स्टिग्मा, आई अंडरस्टैंड कि जिस तरह से हम पढ़े हैं, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन या स्कर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं की तो कुछ नहीं किया इस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में, ये जो स्टिग्मा है वो क्यों है, वो आपकी भी राय जान सकती हूँ मैं ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो, फ्रॉम द मूवी 12th फेल ऑन 104.9 FM।

0: हमारे बच्चे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे वो हमारी चिंता हो सकती है, लेकिन सोसाइटी की क्यों होती है इंडिया में, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी। फनेश योर लाइफ वो नैर।
1: Hi there.
0: हेलो सर।
1: You're talking about the stick. Yeah, you're talking about the studies. Like, इस बच्चे के लिए परसेंटेज नहीं आए
0: The
1: थे वहाँ
0: system,
1: पे
0: yeah, the difference between the education system in India and USA, हम बात कर रहे थे और उसमें से ये बात निकली कि इट्स यू नो इन इंडिया बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, लेकिन ये चीज़ भी है कि वी थिंक फेलियर इज़ नॉट अ गुड थिंग, वी डोंट एक्सेप्ट दैट, राइट? और इसीलिए बहुत सारे सुसाइड केसेस भी होते हैं हमारे इंडिया में।
1: That is true. और यहाँ पे मैंने एक चीज डिफरेंस नोटिस की थी, दैट लाइक आई नो नाउ इन इंडिया इट इज चेंजिंग अ लिटिल बिट बिकॉज ऑफ द स्कूलिंग, सो लाइक अनफॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली सब लोग ये बोल रहे थे कि ये वेस्टर्नाइज से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे इंडिया में अभी बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज या बच्चे को अभी भी स्पोर्ट्स में या अगर उनको अच्छी लगे या ना लगे या बिना स्टडीज छोड़ के ये भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं कर रहे हैं, बिकॉज हियर यहाँ पे यूएस में और इवन इन यूरोप और मोस्ट आई थिंक स्टडी वॉज नॉट द सब्जेक्ट और नॉट द ओनली प्रायोरिटी, दे यूज टू स्पोर्ट्स में भी उसमें या कुछ उसमें मैंडेट करते हैं कि हर एक सेवेंथ क्लास या कोई भी स्टैंडर्ड में हो तुम्हें एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कुछ अच्छा करना पड़ेगा तुम्हें या सोशलाइजेशन या डिबेट में कुछ भी, लाइक स्टडी शुड बी द बैकबोन, इट शुडंट बी द ओनली वन
0: थिंग इन योर लाइफ, या कुछ
1: या ओनली थिंग, या यू नेवर नो। अब लोग जाके हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये क्रिकेटर कितना अच्छा बन गया था, ये इतना कर, देन द अपॉर्चुनिटी वुड हैव देयर, इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट स्टोरी।
0: ट्रू ट्रू, वेरी वैलिड पॉइंट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।
1: थैंक यू
0: जी सर।

0: फ्रॉम द फिल्म 12th Fail सुना आपने, ये बहुत खूबसूरत गीत। और आज के जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं ऐसी सारी फिल्म से लिए गए हैं जहाँ कॉलेज या स्कूल लाइफ की बातें दिखाई गई थी। 104.9 FM फनेश्वर रेडियो पे मैं हूँ नीलम आपके साथ, और आज का जो विषय है वो अबाउट आवर एजुकेशन सिस्टम बैक इन इंडिया एंड ऑफकोर्स वेयर वी लिव राइट नाउ इन USA। तो एक हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए थे, विच लाइन गॉट डिसकनेक्टेड। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कृपया करके फिर से कॉल कीजिएगा एंड वी कैन टेक यू ऑन एयर। एंड यू नो, जब हम असफलता या सफलता की बात करते हैं, इंडिया की सिस्टम की बात करते हैं, एंड दैट्स ट्रू कि हम जिस तरह से पढ़े हैं, मे बी दैट इज़ अ रीज़न वी आर वेरी कम्पिटिटिव, वेरी सक्सेसफुल वेर एवर वी गो। बट एट द सेम टाइम एक नज़रिया जो है इंडिया में कि भाई पढ़ाई तो करनी है, अगर आप क्रिकेट में अच्छे हैं टू बैड, अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं टू बैड, अगर आप बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, जो भी है आपकी बातें, लेकिन वो सारी बातें पढ़ाई के साथ। देर इज़ नो वे एनी पेरेंट वुड अलाउ कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के गिटार ही बजाओ, सब कुछ छोड़ छाड़ के रियाजी करो, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप क्रिकेट की प्रैक्टिस करो। देर आर वेरी रेयर केसेस। जितने भी म्यूजिशियंस की मैं बातें सुनी है मैंने, जिससे भी मिली हूँ, जितने भी सिंगर से मिली हूँ या एनीबडी एल्स, राइट, आई हैव ऑलवेज हर्ड वन थिंग कि भाई हमारे पेरेंट्स ने ये कहा था कि करो, ये अच्छी बात है कि आपको फिल्म्स में इंटरेस्ट है, आपको मूवीज़ में इंटरेस्ट है, ये है वो है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ करो। डिग्री तो भाई आपको ख़त्म करनी है, चाहे वो श्रेया घोषाल हो या जो भी हो, आपने जितने भी हमारे क्रिकेटर्स भी हो गए, आई एम नॉट अबाउट श्योर अबाउट क्रिकेटर्स सो आई कैन नॉट से मच अबाउट दैम, लेकिन सिंगर्स की मैं बात कर लूँ या म्यूजिशियंस की, दे ऑल्सो वॉन्टेड टू मेक श्योर कि उनकी पढ़ाई कम्प्लीट हो। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने गाने गाए, पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने एग्ज़ाम्स भी दी और वो सिंगर भी बने। तो सम हाउ समवेयर हम अभी भी ये बात मानते हैं कि अगर डिग्री होगी तो सब कुछ मुमकिन है, डिग्री नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आपकी राय बिल्कुल लेना चाहूँगी 104.9 FM। और हमारे साथ जुड़े हुए एक लिसनर फनेश, राय योर लाइव ऑन एयर। हेलो,
1: यस
0: सर, यू आर ऑन एयर, बताइए सर।
1: हाँ जी, हाँ जी, आप, आई थिंक यू नो माय पर्सपेक्टिव इज वेरी मच अलाइन्ड टू व्हाट यू वर सेइंग। आई थिंक आवर सोसाइटी, because of our past and maybe colonialism, right, the roots that we have,
0: Ji, sir.
1: I think we've become a very nosy society, and
0: Ji.
1: Partly because we've been living in proximity of each other for so long, everything is transparent, right? That's why I want to know your SAT score, what is your kid doing, make that also then translates, I think, into a pressure to actually compete also
0: and
1: do better.
0: True.
1: And this is throughout our phases of our life we experience that, right? आपका बच्चा कौन से कॉलेज जाता है, कौन से स्कूल जाता है, आप शादी कब कर रहे हो, शादी हो गई तो you know what is the next step in your career? And people are just always thinking about like I want to know more about you.
0: and that is you know because of our society, because we are so closely knitted, right? हमारी building की अगर आप बात कर ली, मुंबई या कोई भी इंडिया की भी, you should know everything about your neighbor. आपको आपके neighbors की सारी जानकारी होती है, right? And so हम इतने जुड़े हुए होते हैं हमारे परिवार से, हमारे दोस्तों से, हमारे neighbors से, कि हर किसी को सबके लिए पता होता है. यहाँ पे it's not like that. यहाँ पे जो white families होती है, even in families, दे रियली डोंट केयर कि मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, मेरी कजिन क्या कर रही है, मेरी सिस्टर क्या कर रही है, बिकॉज दे लिव इन देयर ओन आइसोलेटेड वर्ल्ड. तो वो बहुत बड़ा फर्क है हमारी सोसाइटी और इस सोसाइटी में.
1: और यहाँ आके हम लोग थोड़ा चेंज भी हो जाते हैं, आई थिंक.
0: जी,
1: वी टेंड टू बिकम मोर लाइक व्हाइट्स एंड अमेरिकन्स, राइट? वी टेंड टू बिकम लेस नोजी.
0: जी सर, जी.
1: बट हमारी रूट्स वही रहती है, बिकॉज दैट्स हाउ वी ग्रो अप.
0: True.
1: इवन यहाँ पे भी आप किसी से मिलिए, पीपल विल क्विकली वांट टू नो आप सिटीजन हैं, आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, यू नो आपके बच्चे का GPA क्या आया. सो आई थिंक वी रिग्रेस टू द मीन, यू नो व्हाट, हाउ वी ग्रो अप.
0: But true.
1: Maybe I think our second or third generation wouldn't feel that way because they'll be more, I think, part of this society.
0: They are already
1: where they would care less.
0: Ji sir, thank you so much sir for your time and Fanesh, are you live on air? Hello.
2: Hi Neelam ji, good afternoon. Hello, yeah. Can you hear me?
0: Yes, I can very well. Aapka naam kya hai ma'am?
2: Ishita.
0: Ishita, very nice. Ishita is Shankar Bhagwan's wife. Parvati ka naam hai Ishita.
2: हाँ जी,
0: जी बताइए ईशिता जी, तो क्या है आपकी राय?
2: मुझे ऐसा लगता है कि दो रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडियन पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को फोर्स करते हैं कि कुछ पढ़ाई करो. पहला तो है इंडिया की इतना पॉपुलेशन है, अगर वो गिटार भी बजाता है गाना भी गाता है कितने चांसेस हैं कि वो कुछ बड़ा कर लेगा, तो एक बैकअप होना चाहिए विच मेक सेंस. और दूसरी चीज है कि ये चार लोग कल्चर जो इंडिया में है कि चार लोग क्या बोलेंगे अगर मेरे बच्चे इंजीनियर नहीं बना, तो आई थिंक दैट इज अनदर फैक्टर जो इंडियन पेरेंट्स का थॉट है
0: जी,
2: क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत पीयर प्रेशर है कि, कि अगर आपका बच्चा क्या कर रहा है.
0: And as I said, you know, because we don't live in isolated society in India, right? हम चाहे ना चाहे हमारे परिवार से बहुत सारे परिवार जुड़े होते हैं. हमारे नेबर भी हमारे परिवार जैसे होते हैं. हमारे बिल्डिंग का हर एक बच्चा हमें जानता होता है. एंड देर इज़ नो वे कि वॉट यू आर डूइंग इन योर लाइफ इज़ ओनली योर बिजनेस, बट समहाउ समवेयर वो सारी बातें सबको पता होती है एंड दैट बिकम्स अ प्रेशर कि अरे मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी तो ये लोग क्या कहेंगे. एंड यहाँ पे वो सोसाइटी इतनी आइसोलेटेड है कि दे डोंट रियली वॉन्ट टू नो अबाउट यू और योर लाइफ.
2: I would not say isolated, I would say कि non-judgmental है यहाँ की society. वो judge नहीं करती कि आप जो भी कर रहे हैं, तो they are happy about whatever you are doing.
0: Right, right. So that is a, that's what I'm saying. It's just not the education system that we can blame on. It is how our society is also structured. कि हमारे बहुत सारे जो घर हमारे प्रभाव होता है, how we behave in our system, how we do our ranking or how we do our education, that depends on our society as well. So, but thank you so much, Ishita ji. For your time and your call.
2: Thank
0: you, ma'am. Keep listening. Thank you.
2: Bye-bye.
0: मुझसे पूछा करें. बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने, बहुत सारे कॉल्स. एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. कोई भी विषय हो, आपका प्यार, आपके कॉल्स.
3: सिर्फ यही कह पाता था.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
7: अरे यार, डालस में पंजाब?
3: बिल्कुल, चंडीगढ़ वाले, जहाँ बटर चिकन भी असली और नान भी तंदूर से गर्मा गर्म।
8: From buttery curries and fresh naan to street style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
9: Shadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
12: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
13: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500। The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

दिस इज KZMB 104.9 FM Fun Asia Radio पे आप है मेरी यानी नीलम के साथ और ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ मैं कम्युनिटी आउटरीच की तरफ से कम्युनिटी राउंड अप, जहाँ शनिवार हम आपके लिए लाते हैं बहुत सारे नॉन प्रॉफिट इवेंट्स एक्टिविटीज की जानकारी और हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था की प्रतिनिधि। हम आपके लिए लाते हैं इसी दौरान कुछ पेट्रियोटिक इंस्पिरेशनल स्पिरिचुअल गाने आप ही की पसंद के ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio। 3 बजे तक होती है ये प्रस्तुति ब्रॉट टू यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर, अ प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर कम्युनिटी। आप ही से बनता है ये कार्यक्रम और आप ही के लिए होता है ये कार्यक्रम, तो बने रहिए हमारे साथ ऑन 104.9 FM Fun Asia Radio टिल 3 PM।

तुझ संग प्रीत लागी, जय जय शिव वैरागी। और अमित त्रिवेदी की आवाज़, उन्हीं का संगीत, ऑन 104.9 FM वनेशा रेडियो। कुछ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल इंस्पिरेशन एंड पैट्रियोटिक गाने आप ही की सेवा में हम प्रस्तुत करते हैं हर शनिवार की दोपहर 104.9 FM वनेशा, ब्रॉट टू यू बाय अवर CEO वैशाली ठक्कर। वैष्णव संघ ऑफ डालस आपके लिए प्रस्तुत करते हैं 11th of July, जी हाँ, और ये होने जा रही है आपके लिए पहली बार बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। व्हेन इट इज हैपनिंग ऑन 11th of July बाय वैष्णव संघ ऑफ डालस एंड द वेन्यू इज 22 yards डालस इन लुइसविल टेक्सास। वंस अगेन, दैट इज 22 yards डालस और ये है बाय वैष्णव संघ ऑफ डालस। 9722355555 हम हैं आपके लिए, लाते हैं ये कार्यक्रम एवरी सैटरडे बिटवीन 1 and 2 PM, 2 and 3 PM। हिंदू रिश्ते मैच एंड मिंगल एंड दैट्स अ मैट्रिमोनियल मैच इवेंट हैपनिंग बाय DFW गुजराती समाज एंड इट इज हैपनिंग एट द मैरियट स्प्रिंग हिल स्वीट्स बाय मैरियट एंड द वेबसाइट इज यू कैन रजिस्टर gujarati.life/match2026। वंस अगेन, दिस इज हैपनिंग एट स्प्रिंग हिल स्वीट्स बाय मैरियट एंड इट इज हैपनिंग इन प्लेनो टेक्सास, दैट इज रिश्ते नाते, August 8th एट 1 PM। वैष्णव संघ ऑफ डालस इज प्राउड टू अनाउंस श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव लोटी जी उत्सव एंड दिस इज हैपनिंग वंस अगेन इन ऑगस्ट एंड द वेन्यू इज इन फेयरफील्ड टेक्सास एंड दिस इज श्री यमुना जी गुणगान महोत्सव, इट्स इन फेयरफील्ड टेक्सास एंड इट्स हैपनिंग ऑन August 20, 26, August 27, 26th and 28th. The 250th Independence Celebration hosted by INT and that is India Association of Texas and this is happening, it marks 250 years of independence. And kab ho raha ye? Ye ho raha June 24th, once again that is June 24th, 2 PM till 6 PM, Frisco Flyers and it's in Frisco, Frisco Flyers in Frisco. Vaishnav Milan of Texas presents a Senior Milan Society and this is happening Saturday, June 20th and it is followed by lunch 11 AM till 1 PM. That is once again happening by Vaishnav Milan of Texas on June 20th. Savan Bhajo Satsang by Vivayo, 14th June, Sunday 11 AM. Ekal Vidyalay Foundation presents Ekal Vidyalay ki annual event and this is happening Kathak on the Silver Screen and this is a fundraising event by Ekal Vidyalay and happening on August 28th at Garland Granville Center. Savan Bhajo Satsang happening by Vivayo and that is happening on 14th of June, Sunday 11 AM. Gau Sharan Rila Satsang, 7th of June, Sunday 11 AM. And Ganga Dasera, and that is happening Sunday, 28 June, 4 PM. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम की जानकारी हम आप तक लाते रहेंगे ऑन 104.9 FM फनेशिया रेडियो एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM.

कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पेट्रोटिक गाने आप ही के लिए ऑन 104.9 एफएम फनेश्वर रेडियो ड्यूरिंग दिस आवर। और ये है कार्यक्रम आप ही की प्रस्तुति, आप ही की सेवा में, जिसका नाम है कम्युनिटी राउंड अप, जहां पर हमारे शहर में होने वाले बहुत सारे कार्यक्रम की मैं आपको नीलम देती हूं जानकारी। एंड इट इज ब्रॉट यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर। अगर आप भी किसी भी धार्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, किसी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि आपकी भी बहुत सारी इवेंट्स है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारी पूरी कम्युनिटी तक पहुंचाना चाहते हैं, देन वेल दिस इज योर प्लेटफॉर्म। एंड इफ यू डू वॉन्ट टू एडवर्टाइज ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो एंड ड्यूरिंग द वीकडेज ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस शो, बिल्कुल हम आपके लिए डिस्काउंटेड पैकेज, वी हैव अ वेरी हैवीली डिस्काउंटेड पैकेज फॉर एंटायर नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी। तो आप हमें बिल्कुल कॉन्टेक्ट कीजिएगा। एंड इट इज़ नीलम एट फनएशिया डॉट नेट, वंस अगेन दैट इज़ नीलम एट फनएशिया डॉट नेट। और आपकी जो भी संस्था की जानकारी है हम पहुँचाएंगे हमारी पूरी कम्युनिटी तक। हो सकता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर 501(c)(3), तो भी कोई बात नहीं। इंडिविजुअली इफ़ यू आर ट्राइंग समथिंग टू हेल्प एनी इंडिविजुअल, एनी फैमिली, एनी वे यू आर हैविंग एनी वे ऑफ कैंपेन टू रेज समथिंग, रेज एनी अवेयरनेस, वेल वी कैन हेल्प यू एज वेल। तो उसके लिए भी एक बार फिर से इट इज़ नीलम एट फनेशिया डॉट नेट। यह है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम, हर शनिवार की दोपहर।

This is celebrating 25 years and this is happening by Dr. Chandra Bhanu Satapati, August 8th. The location is Unity of Dallas. Once again, that is Sri Guru Bhagavat by Dr. Chandra Babu Satapati, August 8th, Unity of Dallas. The Vedantic Way to Happiness, and this is happening by Vedantic Society, and it's a lecture by Swami Sarvapriyananda ji, and he's a minister of Vedanta Society of New York. You can go and visit this at Unity of Dallas, Saturday, June 13, 6 p.m. till 8 p.m. Once again, it's 6 p.m. till 8 p.m. and Unity of Dallas, 13th of June. ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम और इवेंट्स की जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, आपको देते रहेंगे हर शनिवार की दोपहर 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. हमारे साथ जुड़ेंगे किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि ड्यूरिंग दिस आवर. अगर आप भी हम तक पहुंचना चाहे, अगर आप भी आपकी इवेंट जो है, आपकी जानकारी हम तक पहुँचाना चाहे, देन प्लीज डू रीच आउट टू मी neelam@funasia.net. And that is neelam@funasia.net, जहाँ पर हमारा पूरा ये प्रयास रहेगा आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है, आपके जो भी इवेंट्स है, उसकी जानकारी, उसकी प्रमोशन ड्यूरिंग दिस आवर. एंड एज आई सेड, इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर 501c3 इंडिविजुअली, आप किसी भी संस्था में कुछ करने के प्रयास में है, किसी इंडिविजुअल को हेल्प कर रहे हैं, किसी फैमिली को, एनी स्टूडेंट, एनी मेडिकल इमरजेंसी, एंड यू वॉन्ट अ प्लेटफॉर्म टू रेज अवेयरनेस, टू स्प्रेड द वर्ड, वेन this is the platform. Every Saturday between 2 and 3 p.m. with me, your host, Neelam.

ये दुनिया मतलब दी नूरान सिस्टर से आपने ये बहुत ही खूबसूरत गीत सुना। कुछ ऐसे ही बातों के साथ आप ही के लिए ये कार्यक्रम मैं नीलम प्रस्तुत करती हूँ हर शनिवार की दोपहर 104.9 FM फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

बहुत ही खूबसूरत ये दोहे आपने सुने कबीर काफे। जी हाँ, ये है एक बैंड का नाम और यही हमारी कोशिश होती है ड्यूरिंग दिस आवर, हम आपके लिए बहुत सारे इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड स्पिरिचुअल कुछ पैट्रियोटिक गाने भी लाते हैं ऑन 104.9 FM वन एशिया रेडियो। कुछ उसी के साथ इंस्पिरेशनल कहानियाँ भी, छोटी कुछ ऐसी कहानियाँ जो मैंने कहीं पढ़ी हो, मैंने सुनी हो, वो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। सो स्कूल में एक स्कूल हुआ करती थी जहाँ पर एक बच्चा जिसका नाम था अर्जुन, पढ़ाई में बहुत ही साधारण बच्चा था, आखिरी बेंच पर बैठता था। तो उसकी जो कहानी है मैं उससे आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगी कि वो बच्चा कैसे आखिरी बेंच से अपनी ज़िंदगी में आगे आ गया। लेकिन उसके लिए पहले थोड़ा सा इंतज़ार, सुनेंगी ये गीत और हमारे साथ जुड़ेंगी एक और संस्था की प्रतिनिधि, उसके बाद कुछ कहानी आप ही के लिए यहाँ 104.9 FM।

0: और हमारे साथ जुड़े हुए हैं DFW हिंदू टेम्पल की प्रतिनिधि वंदना जी, जिनसे करेंगे हम कुछ बातचीत। वंदना जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू मैम, दिस इज फन एशिया रेडियो।
1: वेरी गुड आफ्टरनून टू यू नीरन जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर।
0: एब्सोल्युटली, बताइए मैम, सो व्हाट इज हैपनिंग एट हिंदू टेम्पल?
1: सो टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट द अपकमिंग इवेंट व्हिच इज बीइंग held at DFW Hindu Temple from June 28th to July 4th. Mm-hmm. It is Srimad Bhagavat Katha. So DFW Hindu Temple invites all the devotees with their family and friends to attend Srimad Bhagavat Katha by none other than Acharya Sri Midul Krishna Goswami Ji. Mm-hmm. And as I mentioned earlier, it is from June 28th to July 4th. Those who don't know about who is Midul Krishna Goswami Ji, he is world-renowned devotional singer and a spiritual orator at Sri Banke Bihari Mandir in Vrindavan.
0: Okay, wonderful, wonderful.
1: So, yeah, and it starts from, as I mentioned, June 28th is a Kalash Yatra. It starts at 3 p.m. Mm-hmm. And Katha will be until 6:30 p.m. And Mahaprasad will be served every day. So it's a great opportunity for everyone to come together and take advantage of this wonderful devotional program.
0: Great.
1: Events batati jaungi, sponsorship hai, but for more details, please visit our website, which is dfwhindutemple.org, and phone number is 972-445-3111. मैं जस्ट ब्रीफ में बताती जाती हूँ जो लोग भागवत कथा के बारे में नहीं जानते हैं कि ये एक सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की काफी दिव्य लीलाएं बताई गई हैं, प्रेम भक्ति और काफी मतलब धर्म का मार्ग इसके बारे में बताया गया है, जो आज के समय में मुझे लगता है बहुत ही आवश्यक है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आपको जीवन जीने का तरीका बताता है, भक्ति मार्ग पर चलने का बताता है, सदाचार के बारे में बताता था। तो आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए, और छुट्टियों का समय चल रहा है, आई होप यू कैन ब्रिंग योर किड्स एज वेल एंड गेट टू नो व्हाट इज श्रीमद् भागवत कथा एंड एवरीथिंग जस्ट इन 7 days एंड क्रिस्प एंड कंसाइज, सच अ ब्यूटिफुल ग्रंथ जो हमारे सनातन धर्म में है।
0: ग्रेट,
1: तो यही कहना चाहूंगी कि आइए आप इस पावन अवसर पर कथा का श्रवण करें और जीवन को भक्ति मार्ग से जोड़ें।
0: जून टू जुलाई फोर्थ भूलेगा मत,
1: जुलाई 4th टेम्पल
0: में ये श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया गया है। मोर इन्फॉर्मेशन dfwhindutemple.org। थैंक यू सो मच वंदना जी फॉर कमिंग ऑन एयर एंड शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू
1: थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू
0: टू मैम।

एशिया रेडियो, यह है आपका कार्यक्रम, हमारी पूरी कम्युनिटी का कार्यक्रम। हर शनिवार की दोपहर आप ही की सेवा में 104.9 FM, 1 Asia Radio, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। और इट इज ब्रॉट यू बाय अवर सीईओ वैशाली ठक्कर, अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एंटायर कम्युनिटी। एक कहानी मैं बताने जा रही थी कि एक स्कूल के आखिरी बेंच पर एक बच्चा बैठता था जिसका नाम था अर्जुन। पढ़ाई में बहुत ही साधारण था और जो भी टीचर अक्सर उसे डांटते रहते थे क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहता था जिससे उसके पढ़ाई में ध्यान ही नहीं रहता था। उसके जितने भी और भी बच्चे थे उस क्लास के, वो सारे उससे बहुत ही चिड़े चिड़े भी रहते थे। एक दिन जो क्लास में सभी छात्रों को पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर कहा। अर्जुन की बारी आई, तब अर्जुन ने कहा, जो ये बच्चा था जो पिछली बेंच पर बैठा था, उसने कहा कि भाई मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो लोगों की ज़िंदगी बदल सके। टीचर को गुस्सा आया कि भाई मैं यहाँ पे सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूँ और उसने कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे दिया। पूरे क्लास में सब लोग हंसने लगे कि क्या जवाब है ये कि मैं कुछ बनना चाहता हूँ जिससे लोगों की ज़िंदगी बदल सके। खैर, समय बीतता गया, अर्जुन पढ़ाई में ठीक ठाक ही रहा, एवरेज रहा। लेकिन उसे मशीनरी बनाने का बहुत शौक था, तो वो क्या करता था, पुराने रेडियो, पंखे, खिलौने खोल खोल कर उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते थे, उसके पुर्जे होते थे, उससे नई चीज़ें बनाता था। कई बार उसमें उसको ऑफकोर्स सफलता मिलती थी, कई बार असफलता भी मिलती थी, लेकिन वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को छोड़ता नहीं था। उसकी स्कूल ख़त्म होने के बाद उसने अपने छोटे से कमरे में अपने घर पे ही काम करना शुरू कर दिया। पैसे तो थे नहीं इतने, लेकिन साधन भी कम थे, लेकिन उसका जो हौसला था वो बहुत बड़ा था। उसे कुछ करना था ज़िंदगी में और उसे वही करना था जिससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो पाए, और उसे पता नहीं था कि वो कैसे होगा। कई साल बाद उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते करते करते किसानों के लिए एक बहुत ही सस्ती सी मशीन बना ली, जिसका काम आधा, जिससे वो कोई भी किसान यानी कि कोई भी फार्मर जो है उसका काम आधे समय में होने लगा। देखते ही देखते उसकी जो खोज थी, जो उसकी इनोवेशन थी, उसकी जो एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी खोज पूरे देश में प्रसिद्ध हो गई। हज़ारों किसान जो थे, हमारे इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, हज़ारों फार्मर्स जो थे, उसकी ज़िंदगी आसान हो गई। गवर्नमेंट ने भी उसे रिकग्नाइज़ किया और एक दिन उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रोल पे इनवाइट किया। वहीं मंच पर वो खड़े हुए अपने स्कूल के, और अर्जुन ने जो दूसरे स्टूडेंट्स थे, दूसरे छात्र से, उसने कहा कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, एक कहानी उसने दोहराई, उन्होंने पूछा, कहा कि पता है आप सभी को कि मैं यहाँ पर पढ़ता था, तो लोग जब मेरे आंसर या मेरे जो भी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स देखते थे तब बहुत ही हैरान होते थे कि ये बच्चा क्या करेगा बड़ा होकर, उससे 10 या 15 या 20 मार्क्स से ज़्यादा आते नहीं था। और तब मैं सबको कहता था कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, कुछ करना है ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। उसने बच्चों से कहा कि आपकी सफलता आपके मार्क्स से नहीं, आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपकी धैर्य से होती है। अगर आज आप लोगों पर लोग हंस रहे तो मत, कोई भी परेशानी मत कीजिए, डिसअपॉइंट मत होना, मायूस मत होना, क्योंकि यही लोग अपने सपनों पर हंसती है लेकिन उसी के बाद उन्हें सलाम करती है। फिर क्या था, पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। आखिरी बेंच का ये लड़का आज लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया था। And this is a true story, an inspirational story which happened in Maharashtra. एक छोटे से गांव का ये बच्चा जिसने बड़े होकर महाराष्ट्र के ही जितने फार्मर्स थे उसके लिए उनकी ज़िंदगी आसान कर दी। तो ज़िंदगी में कभी कभी असफलता मिल सकती है, लेकिन सफलता अपने ख्वाब डेडिकेशन से पूरे होते हैं। 9722355555 ये कार्यक्रम आपकी सेवा में हर शनिवार की दोपहर 3 बजे तक ऑन 104.9 FM।

जाते जाते फन पिज्जा किचन की आपको याद दिला दो। जी हाँ, फन पिज्जा किचन जिसके है दो लोकेशन, फ्रिस्को एंड कॉलोनी। तंदूरी चिकन पिज्जा हो या वेजिटेरियन पनीर पिज्जा, आप ही के लिए फन पिज्जा किचन। और इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से अनुमति, सुनते रहिएगा आपका और हमारा फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
6: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
5: कहाँ?
7: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
4: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग दे सी, वन प्लेस, वन vibe.
8: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
9: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
10: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
9: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
11: डिड यू नो लेसिक इज जस्ट वन ऑफ 6 वेज टू गेट रिड ऑफ ग्लासेस एंड कॉन्टैक्ट्स? आई एम डॉक्टर शहजाद बातलीवाला. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
12: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
11: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
13: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
14: Main expert lifeline use karna chahunga.
13: Computer ji, SBA loan experts se connect kiya jaye.
15: SBA loan experts ne business loan process bahut hi aasan bana diya hai. No tax returns needed to apply aur credit par hard check bhi nahi. Results sirf 10 minute mein.
16: Business loan options ko clarity se samajhne ke liye call kare 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA loan experts. Faisla clarity ke saath.
17: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio

0: जेल से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: ए पात्रा वाट लगले रे पोरे जी।

0: Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
1: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

तहत कोल मिदाम सुन रहे थे आप ये फारसी गाना। खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात। आई बी विथ यू टिल 6 PM और ये है सेगमेंट बोली प्यार की, जिसमें बहुत प्यार से रीजनल लैंग्वेजेस के गाने हम आपको सुनवाते हैं बिटवीन द आवर्स ऑफ 3:30 and 5 PM। अपने फेवरेट गाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं एट 9722355555। बस याद रखें कि इस सेगमेंट में हम उर्दू, इंग्लिश और हिंदी के गाने नहीं प्ले करते, बल्कि प्ले करते हैं सिर्फ आपके फेवरेट साउथ एशियनल एशियन रीजनल लैंग्वेज सॉन्ग। स्टूडियो का नंबर यकीनन आपके पास होगा, बट जस्ट इन केस 9722355555।

0: What a sweet, sweet Gujarati song. Thank you for tuning in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together, that which is something we do very well during Boli Pyar Ki, because is segment mein hum tamam South Asian subcontinent ki regional languages ke gaane sunwate hain, wo bhi aapki request par. 972-235-5555 hai. हमारी स्टूडियो का नंबर. फनीशा रेडियो, यू आर ऑन द एयर. आपका नाम? ऑल राइट सर, रेडियो का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए सो आई कैन हियर यू बेटर. थैंक यू. और बताइए कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगे?
1: सिंधी.
0: सिंधी गाना?
1: हिंदी.
0: नहीं नहीं, हिंदी गाने नहीं प्ले कर रहे सर, ये रीजनल लैंग्वेजेस हैं. सो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के गाने नहीं प्ले कर रहे इस वक्त हम. कोई और लैंग्वेज बताइए.
1: I'm
0: sorry.
1: Okay. Yeah, yeah. Maybe you can play Greek Virudu from Telugu.
0: Okay, Telugu song है. क्या नाम फिर से बोलिए? Greek क्या?
1: Greek Virudu from Ninne Pellaadatha movie.
0: ओके okay, आप तो खैर ऐसे बता रहे हैं जैसे मुझे पता होगा एग्जैक्टली कौन सा है. मुझे नहीं पता, पर कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे. दैट्स माय एक्सपर्टीज इज फाइंडिंग व्हाट एवर सॉन्ग आवर लिसनर्स वांट. अच्छा ये बताइए आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं हमको?
1: प्रॉस्पर.
0: प्रॉस्पर, थैंक यू फॉर योर कॉल. एंड ये रहा आपका तेलुगु सॉन्ग. एंड आई एम श्योर एवरीवन नोज दैट वी आल्सो हैव ए 24/7 तेलुगु स्टेशन राइट, रेडियो संगम on 104.1 FM.

0: I hope you enjoyed this beautiful Uriya bhajan. We're going to continue Boli Pyar Ki right after the break. And if I place you on hold, ya to aapko meri awaaz aayegi ya music sunai dega. Either way, please continue to hold. Remember, this segment, there's a hold of 5 to 10 minutes.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner. The law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
4: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com। देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
11: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
12: क्या मतलब?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही manage कर लेंगे.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
12: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
14: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
0: Welcome back to 104.9 FM, Funisha Radio, bringing the community together. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, और ये है बोली प्यार की, हमारा वो पॉपुलर सेगमेंट जिसमें के होल टाइम 5 से 10 मिनट का होता है. सो आई रियली डू अप्रिशिएट एवरी वन्स पेशेंस. द नंबर टू कॉल इज स्टिल द सेम, 972-235-5555. And to give you a quick recap, ke kaun kaun si languages ke gaane so far humne play kiye, Farsi, Malayalam, Marathi, Gujarati, Telugu and Uriya. So far we played 6 songs in the past 30 or so minutes. Anyway, let's go ahead and not keep you guys waiting. Move on to our next caller. Funisha Radio, aap on air hai, aapka naam?
16: Hello?
0: Hello ji, aap on air hai, aapka naam?
16: मेरा नाम निकिता है. कैसे हो आप?
0: मैं अच्छी हूँ निकिता जी, आप कैसी हैं?
16: मैं बढ़िया. एक गुजराती सॉन्ग रिक्वेस्ट करना था.
0: ऑल राइट, क्या नाम है आपके गुजराती सॉन्ग का?
16: मेरे थी का इंकलाउजो.
0: मेरे क्या? आई एम सॉरी,
16: मेरे थी कई लाउजो, मारा हाटू वाली दा
0: कई लाउजो. ऑल राइट,
16: एल्बम वालनो दरियो.
0: Okay, let me find that for you. और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप निकिता जी?
16: बस यहाँ से, प्लेनो.
0: प्लेनो से? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के सेगमेंट का ये है दूसरा गुजराती सॉन्ग, यानी कि अब हम और गुजराती गानों की रिक्वेस्ट नहीं ले पाएंगे.

0: निकिता जी की फरमाइश पर सुन रहे थे हम ये बहुत ही प्यारा सा गुजराती गाना। उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं और आज का ये सेगमेंट यानी कि बोली प्यार की एंजॉय कर रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट गाना होगा कौन सी लैंग्वेज में। फनीशर रेडियो, आप ऑन एयर है, आपका नाम? हेलो, हाय, आप ऑन एयर है, आपका नाम?
1: प्रियंका
0: जी। प्रियंका बोलिए, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: राजस्थानी सॉन्ग।
0: राजस्थानी सॉन्ग, और क्या नाम है आपके गाने का?
1: नैनारा लोभी फ्रॉम सीमा मिश्रा।
0: नैनारा लोभी, इसका क्या मतलब होता है?
1: बेसिकली ब्यूटीफुल मैन आईज के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में, एंड देन यू आर प्रेजिंग द बिलीवर।
0: आई सी, दैट्स नाइस। और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं हमें? प्रियंका नाम बताया, राइट?
1: जी।
0: ओके, कहाँ से कॉल कर रही हैं?
1: वेस्टलेक।
0: ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ये रहा आपका राजस्थानी सॉन्ग, एंजॉय।

0: फेरारी मोन सुजोय के लिए प्ले किया हमने ये गाना. आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एज वेल. दिस इज बोली प्यार की, जहां हर गाना बहुत प्यार से आपके लिए प्ले किया जाता है. सो फार वी प्लेड क्वाइट अ फ्यू डिफरेंट लैंग्वेजेस और डबल टेक सिर्फ गुजराती भाषा का हुआ है, यानी कि बाकी तमाम लैंग्वेजेस के गाने हम फॉर श्योर आपके लिए प्ले कर सकते हैं. Moving on to our next caller, patiently holding. Thank you so much. Aap on air hai, aapka naam? Hello?
1: Hello?
0: Ji, aap on air hai, aapka naam? Hello? Please turn down the radio Hello? So I can hear you, warna meri hi awaaz feedback mein echo karti rahegi. Bataiye, kya naam hai aapka?
1: My name is Tavya.
0: Ji, bataiye.
1: I want a song from Paramatma movie.
0: ओके, कौन सी लैंग्वेज है?
1: कनाडा लैंग्वेज.
0: कनाडा लैंग्वेज. एंड गाने का नाम क्या बताया आपने?
1: परवशन आदेनु.
0: परवशा
1: ना देनु.
0: परवशा ना देनु. इज दैट व्हाट यू सेड?
1: या.
0: ऑलराइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप हमें काव्या?
1: रोना.
0: All right, here is your song. Thank you.

0: we're going to take a short break. When we come back, we'll continue Boli Pyar Ki. So if there's a regional language song you want to hear, give us a call. 972-235-55.
1: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
2: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
3: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
4: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
5: Apni roots bhi aur Texas ka swag bhi, dono ek saath ek hi jagah, HEB mein. Royal Sona Masuri rice ho, Nanak paneer ho, ya Parle Ji biscuits. Wahi desi taste jo dil ko ghar jaisa feel de. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites, jo sirf yahi milte hai. Ek hi trip, ek hi store, aur sara saman done. To aaj hi jaiye apne nearest HEB par. Aur le jaiye apne traditional aur Texan favorites ek saath. HEB, here everything's better.
6: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
7: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
6: सच में एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
7: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
6: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
7: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
6: नंबर बोल जल्दी.
7: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
8: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
9: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
12: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी. और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को.
13: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
12: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग. ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो. श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी.
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
14: सच में सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन.

0: मैनू तेरा शबाब ले बैठा। सुन रहे थे आप असा सिंह मस्ताना की आवाज में ये पंजाबी गाना। बिफोर वी टेक आवर नेक्स्ट कॉलर ऑन द एयर, आई क्विकली वांट टू टेल यू अबाउट द विशाल एंड शेखर इवेंट। दैट्स राइट डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू कम लाइव। विशाल एंड शेखर, द डुओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस संडे जुलाई 12th को एट द Discover Center in Garland. The tickets are on sale right now at cashpatelproductions.com. Moving on to our next caller, Fanisha Radio. You're on the air. Aapka naam? Hello, you're on the air.
1: My name is Abhinu.
0: Ji, boliye Abhinu. Kaun si language ka gana request karenge?
1: Bhojpuri.
0: Bhojpuri, all right. Kya naam hai aapke gaane ka?
1: रिंकिया के पापा।
0: ओहो, रिंकिया के पापा। ऑल राइट, लेट्स फाइंड आउट रिंकिया के पापा ने क्या किया। हियर इज इट द चट देनी मार देली, इज दैट द वन?
1: यस।
0: ऑल राइट, आई विल प्ले दैट फॉर यू। थैंक यू फॉर योर कॉल। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप हमें?
1: मिकिनी।
0: मिकिनी, थैंक यू, हियर इट इज।

0: रिंकी आके पापा सुन रहे थे हम ये भोजपुरी गाना. होप यू एंजॉयड इट. आई थिंक आई ओनली हैव टाइम फॉर वन लास्ट सॉन्ग. फनीशा रेडियो, यू आर आवर लास्ट कॉलर. आपका आप ऑन एयर हैं. आपका नाम? हेलो. जी आप ऑन एयर हैं. यू आर आवर लास्ट कॉलर.
1: Okay, I was just thinking that are you guys still accepting the regional songs request?
0: जी जी बिल्कुल. बताइए कौन सा गान, कौन सी लैंग्वेज का गाना रिक्वेस्ट करेंगी?
1: मराठी सॉन्ग मुझे रिक्वेस्ट करना है.
0: ओके, क्या नाम है गाने का?
1: मूवी का.
0: ओके,
1: सैराट मूवी का यड़ लागल.
0: यड़ लागला. ओके, आई विल प्ले दैट फॉर यू. और ये बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
1: मेरा नाम स्नेहा है और मैं अभी तो फ्रिस्को में हूँ. वैसे मैं लिटिल एल में रहती हूँ.
0: ओके, थैंक यू सो मच हमारे आपके घर चाय पीने के लिए. फिलहाल ये रहा आपका मराठी सॉन्ग. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द लास्ट सॉन्ग फॉर आवर रीजनल सेगमेंट ऑफ बोली प्यार की.

चुपके से सुन मिशन कश्मीर से लिया गया ये गाना। आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। ये गाना ऋतिक रोशन और प्रीति जिंता पर पिक्चराइज किया गया था। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों का स्वागत करना चाहूंगी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई बी विथ यू फॉर अनदर आई वुड से 52 मिनट्स, दैट्स राइट, टिल 6 PM आई बी एंटरटेनिंग यू विथ आवर सेगमेंट रेडियो अंताक्षरी। ना ना ना ना, इस अंताक्षरी में आपको गाना नहीं गाना, आपको गाना गेस भी नहीं करना, बल्कि आपको गाने को गाने से कनेक्ट करना है, वो भी अपनी रिक्वेस्ट के जरिए। नाउ बेसिकली आई विल बी प्लेइंग अ सॉन्ग एंड कनेक्टेड टू द नेक्स्ट सॉन्ग यूजिंग एनी वर्ड विद इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द सॉन्ग, यानी कि गाने का जो मुखड़ा है उससे हम चोरी करेंगे एक कोई वर्ड, और उस वर्ड से शुरू होगा या उस वर्ड के साथ होगा हमारा अगला गाना। साथ में हमारे दो गानों का टेम्पो भी मिलना चाहिए, यानी कि अब आप एक गज़ल प्ले करें और उसके बाद धूम मचाएं, ये नहीं हो सकता। सो दोनों गानों का टेम्पो या तो मिलता जुलता होना चाहिए, या अगर पहला गाना स्लो है तो अगला गाना थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो अंताक्षरी, जिसमें पहला ये गाना हमने आपको सुनवाया चुपके से सुन। अब कनेक्ट करेंगे हम इसे अगले गाने के साथ, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि आज का सेगमेंट क्या है, और आप चाहें तो अगला गाना सजेस्ट कर सकते हैं। गौर से सुनिए फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके का टाइटल ट्रैक एंड सजेस्ट द नेक्स्ट सॉन्ग 9722355555।

आर ट्यून्ड इन टू रेडियो अंताक्षरी, जिसमें हम एक गाने को अगले गाने से कर रहे हैं कनेक्ट यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स इन द मुखड़ा ऑफ द सॉन्ग, और गाने का टेम्पो भी मेंटेन कर रहे हैं ताकि एक गाना दूसरे गाने से आसानी से कनेक्ट हो सके. दिस पार्ट ऑफ रेडियो अंताक्षरी इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज. ड्रीम होम मॉर्गेज हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज अचीव होम ओनरशिप सिंस 1998. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 states. Their expert team delivers stress-free tailored mortgage solutions. So make your dream home a reality with Dream Home Mortgage. Aap call kijiye 972-245-LOAN or visit dreamhomemortgage.com. Moving on to our next song.

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके, चल ठीक है, प्लीज।

हमारे पिछले गाने से चुराया हमने वर्ड माया और सुनाया आपको आवारापन मूवी का ये गाना, और अब यहाँ से हम लेते हैं वर्ड इंतजार और सुनाते हैं, एक्चुअली दिलदार, और सुनाते हैं आपको ये गाना।

मित्रां दी महफिल च सारे दिलदार ने सुन रहे थे आप ये प्रदीप शरण की आवाज में पंजाबी गाना एज पार्ट ऑफ आवर सेगमेंट रेडियो अंताक्षरी, जिसमें एक गाने के साथ हम अगला गाना कनेक्ट करें. एंड थैंक यू दीपक फॉर सजेस्टिंग दिस नेक्स्ट सॉन्ग, बिकॉज मैं खुद थोड़ी कंफ्यूज थी कि अगला गाना किस गाने से कनेक्ट करें, लेकिन आपने दो तीन वर्ड्स यहां से ले लिए इस गाने से और टेम्पो भी बड़ा अच्छा जोड़ दिया हमारे इस अगले गाने के साथ. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रेडियो अंताक्षरी. विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. दिस इज अमरीन हसनात.

0: Agency. And it's important that you tune in because they are the ones who help us bring all of this awesome entertainment to you absolutely free. Agar aapko entertainment ke liye paise dene pad rahe hain, that means you're not listening to Funasia Radio. So tune in to free entertainment 24/7 on the number one Bollywood station in North America, Funasia Radio, bringing the community together.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो,
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
7: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
6: कैसे?
7: पेज 3 ईटरी?
6: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
7: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहाँ माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
14: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
13: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
15: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
16: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: इतना सब और प्राइस?
17: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Funasia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

तू यार तू ही दिलदार मेरा बनके तेरा जोगी। जी हाँ, ये गाना हमने आपको सुनवाया कमर्शियल ब्रेक से पहले, टेकन फ्रॉम द फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और अब रेडियो अंताक्षरी में हमने इस गाने के साथ जोड़ दिया पिछले गाने को। दिस लास्ट ट्रैक वॉज फ्रॉम द फिल्म बचना ए हसीनो, टाइटल जोगी माही। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। इस गाने को पिक्चराइज किया गया था रणबीर कपूर पर। इफ यू आर जस्ट ट्यूनिंग इन, स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। इट्स 37 मिनट्स फास्ट 5 ऑन द 6th ऑफ जून 2026। इट्स अ सुपर सैटरडे आफ्टरनून। आई एम सो ग्लैड यू कुड जॉइन अस ऑन 104.9 FM। 86 डिग्रीज फ़ारेनहाइट इज द करंट टेम्परेचर। इट्स बिन मोस्टली क्लाउडी टुडे। वैसे आज का हाईएस्ट टेम्परेचर था 88 एंड दैट्स ऑलरेडी पास्ट, एंड द लोएस्ट वॉज 73 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। रेडियो अंताक्षरी को कंटिन्यू करते हैं और लेकर चलते हैं आपको अगले गाने की तरफ, विच कनेक्ट्स टू द वन यू जस्ट हर्ड।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू से लिया गया ये गाना सुन रहे थे आप, जो कि टाइगर श्रॉफ, तारा और अनन्या पर पिक्चराइज किया गया था। इट्स 40 मिनट्स past 5 and you're listening to Dil Se on 104.9 FM. We're going to connect this song to the next one. After all, that's what Antakshari is all about. Hum word bhi connect kar rahe hain aur music ka tempo bhi.

मेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड ओ मैनू कहंदे नाना नाना सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी राब्ता कांग्रेचुलेशंस कुनाल फॉर गिविंग अस अ करेक्ट आंसर यस वर्ल्ड म्यूजिक डे इज ऑन जून 21st एंड यू कैन पार्टिसिपेट एंड बी पार्ट ऑफ इट बाय विजिटिंग funasia.net एंड कांग्रेट्स टू कुनाल फॉर विनिंग द डिलिशियस प्राइज फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज रेडियो अंताक्षरी को कनेक्ट करते हैं एज इन कंटिन्यू करते हैं कनेक्ट करते हैं इस गाने को अगले गाने के साथ

आई होप कि आपने मजा लिया वॉन्टेड के इस गाने का जो सलमान खान और आयशा टाकिया पर पिक्चराइज किया गया था. लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, यानी कि रेडियो अंताक्षरी विल कंटिन्यू. मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट सॉन्ग विच ऑल्सो कनेक्ट्स टू द प्रीवियस वन. लेट्स सी इफ यू कैन रिकॉग्नाइज दैट वर्ड.

मज़ा के बाद ले गई टेकन फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है। और अब हमारे जाने का वक्त आ गया है, सो जाते जाते हम आखिरी गाने की तरफ लेकर चलते हैं। मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर, कब प्यार की पहली नजर ले गई एंड वी पिक्ड द वर्ड खबर। पोस्टर तो अब लगवाने ही पड़ेंगे। दिस इज द लास्ट सॉन्ग एंड दिस इज अमरीन हसनाद साइनिंग ऑफ फॉर येट अनदर एडिशन ऑफ दिल से। आपसे होगी कल मुलाकात, सेम प्लेस सेम टाइम, राइट हियर ऑन 104.9 FM बिटवीन 3 एंड 6 PM।

जी हाँ, आप और हम जिले जरा सैटरडे नाइट माहौल बनाएंगे. और थैंक यू अमरीन फॉर दैट ऑसम शो. यू सेट अप द स्टेज सो वेल. आई होप आई राइज टू द स्टैंडर्ड एंड आई होप आई कैरी द बटन फॉरवर्ड.

जी हाँ, आज की रात माहौल तो बनाएंगे आपके लिए जरूर से, और अच्छे अच्छे रिक्वेस्ट आना भी शुरू हो गई। आई डोंट इवन ओपन द फोन लाइंस येट, बट यस वसीम भाई, आपका भी सॉन्ग लाइंड अप है और लगाता हूँ गाना कुछ ही लम्हों में। इन द मीन टाइम इतनी गर्मी पड़ रही है, क्या बताऊँ मैं आपको।

सीने पे पसीना तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा।

यहाँ कैसी गुंडागर्दी है, सर्दी में भी गर्मी है. माय गुडनेस, द टेम्परेचर हियर, आई जस्ट केम फ्रॉम एलए एंड द हीट हिट मी एंड इट विल टेक अ फ्यू डेज टू गेट यूज टू द हीट एंड द ह्यूमिडिटी. बट कोई नहीं यार, डैलस का मौसम, बस कुछ टाइम दो और अब भी बदलेगा, अभी बारिश गिरेगी. इनफैक्ट देयर इज फोरकास्ट ऑफ शावर्स एंड स्प्रिंकल्स ऑल अराउंड डीएफडब्ल्यू मेट्रोप्लेक्स, सो इट विल ब्रिंग अस द रिप्रीव, इट विल गिव अस द ब्रेक फ्रॉम द गर्मी गर्मी. वेल लेट्स टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक जिसकी रिक्वेस्ट आई थी और लेके चलता हूँ आपको धूम की तरफ. वन ऑफ द थिंग्स दैट आई मिस्ड व्हेन आई वाज इन एलए वाज द बाइक, एंड इफ यू सीन द ओरिजिनल धूम, जॉन एब्राहम एंड अभिषेक बच्चन की जो ओरिजिनल धूम थी, इट वॉज ऑल अबाउट द बाइक. लेट्स टेक यू टू अ ट्रैक बाय टाटा यंग. दिस इज द टाइटल ट्रैक एंड दिस इज ड्यूरिंग द एंडिंग क्रेडिट्स में बजाया था ये गाना. आई लव दिस बीट, इट्स अ लिटिल रेसी सॉन्ग, बट टाटा यंग, शी इज गॉट द रूट्स ऑफ रूट्स फ्रॉम कोरिया अटैच टू हर एंड दिस सॉन्ग पुट हर ऑन द मैप. हियर कम्स धूम धूम.

जी हाँ, धूम मचाएंगे और थोड़ी शरारत भी करेंगे आप लोगों के साथ। रहूंगा आपके साथ मैं 9 बजे तक, और बहुत सारे रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई। आई हैवंट इवन ओपन द फोन लाइंस येट, बट कोई नहीं, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी बैक। बताता हूँ मैं कहाँ था, क्या किया मैंने थोड़ी देर में, और चलते चलते लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर। और वसीम साहब की रिक्वेस्ट पे, उनकी खूबसूरत बेगम के लिए गाना उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, एंड अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, इससे अच्छा गाना मैं क्या बजाऊँ आपके लिए। वेल, हियर कम्स गहरा हुआ रंग इश्क का, गहरा हुआ। अगर आपको पता हो कि इश्क का रंग कैसा होता है, इज इट पिंक, इज इट ब्लू, इज इट वेल, जैसा भी होता हो, गहरा हुआ ये इश्क का रंग।

जी हाँ, रंग आशिकी इनका गहरा हुआ। वेल वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमल और वेलकम बैक। क्या ये सॉन्ग तो बज रहा है, रिक्वेस्ट आई है अगले गाने की और जोहरा की रिक्वेस्ट पे लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हम सफ़र हो जहाँ पे रंग आशिकी गहरा हो जा रहा है, तो यार ये एक जिंदगी भी काफ़ी नहीं है।

जी हाँ, कहाँ से आई ये हमें बता दे, ये जिंदगी काफी नहीं है। टेकन फ्रॉम मोनिका, ओ माय डार्लिंग। यस, रिक्वेस्ट आई है, बहुत ही क्यूट रिक्वेस्ट आई है हृदय से, हृदय की, जो बना बजाऊंगा मैं आपके लिए ब्रेक के बाद। यू वांट टू रिक्वेस्ट अ सॉन्ग दैट हैज थ्री वर्जन्स, कैन यू बिलीव इट, थ्री वर्जन्स ऑफ दैट सॉन्ग। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट तमा तमा लोगे, दैट विल कम आफ्टर द ब्रेक। इन द मीन टाइम दिस इज योर होस्ट आरजे सौमिल और हम आए हैं

आपको कुछ सुनना हो, कुछ सुनाना हो या फिर कुछ जादू चलाना हो तो कॉल कीजिएगा। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि द सॉन्ग शुड हैव अ बीट दैट विल मूव आवर फीट। हृदय, हियर कम्स योर ब्यूटीफुल सॉन्ग तमा तमा कमिंग योर वे। देयर आर थ्री वर्जन्स ऑफ दिस सॉन्ग। आई विल सी इफ आई कैन प्ले ऑल थ्री वर्जन्स वन बाय वन, अ लिटिल बिट ऑफ कोर्स एंड नॉट द होल सॉन्ग, क्योंकि पुराने गाने जितने अच्छे होते थे उतने ही लंबे होते थे। वेल, आई विल कट द सॉन्ग शॉर्ट एंड ब्रिंग यू ऑल थ्री फ्लेवर्स ऑफ तमा तमा लोगे।

काल का लोकप्रिय गीत ये सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।

जी हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ फनेशिया. वेल, अगर आप लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो तो जरूर कॉल कीजिए. इनफैक्ट स्टूडियो का नंबर 972-3555555. बस शर्त सिर्फ इतनी है, द सॉन्ग दैट यू रिक्वेस्ट शुड हैव अ बीट दैट मूव आवर फीट. बर्थडे का माहौल बन ही चुका है, तो आई एम टेकिंग यू अनदर सॉन्ग व्हिच इज अ बर्थडे बैश.

बचपन का प्यार, बचपन का नहीं बचपन का प्यार कभी भूल नहीं जाना रे, टेकन फ्रॉम बच्चाज एल्बम. ऑफ कोर्स द सॉन्ग इज कॉल्ड वेरी क्यूट सॉन्ग विद टू किड्स एंड टॉकिंग अबाउट रेमिनिसिंग अबाउट द चाइल्डहुड डेज. अभी जो कॉल आई थी 10 साल की बर्थडे सेलिब्रेशन दैट ट्रिगर्ड दैट सॉन्ग. लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर. अगर आपको कुछ सुनना हो कुछ सुनाना हो तो कॉल कीजिए स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. क्योंकि आज की रात ऑल यू नीड इज

जी हाँ, आज की रात ऑल आई नीड इज योर लव टुनाइट। वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर होस्ट आरजे सोमल, यू ट्यून इन टू जीले जरा ओनली ऑन फिनेशिया, वी गेट ऑल ऑफ द क्लास, नन ऑफ द बकवास, वी क्रिएट सम ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड वो लम्हे जो हम बरसों बाद फिर से याद करेंगे।

वो भीगी भीगी रात, वाल रात तो नहीं हुई बट भीगने का मौसम तो आ गया है. इनफैक्ट इट्स रेनिंग, इट्स पोरिंग राइट हियर इन मैकिनी. एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक वी विल स्विच ओवर टू ऑसम मौसम एंड कीप दोज रिक्वेस्ट्स कमिंग इन. ऑसम मौसम.